0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
5: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नहीं जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहाँ से वो सारी बातें हम आप तक पहुँचाते हैं जो आप सुनना समझना चाहते हैं कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या काम करता है, किन किन विषयों पर काम करता है। जाहिर सी बात है कि हम हेल्थ पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं।

0: प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे, वन्य जीवों के बारे में बात करेंगे, इनकी देखभाल किस तरीके से हम कर रहे हैं या कोई शख्स कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि जो इनके आसपास रहता है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप IIM कलकत्ता के एलुमनाई रह चुके हैं, आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स में हासिल की है रांची विश्वविद्यालय से, आपके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल सेक्टर, और आप सिलिकॉन वैली फेलोशिप के विजेता रह चुके हैं, आप इको हीरोज कैंपेन के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं, और आपने कॉर्पोरेट करियर को 2010 में अलविदा इसलिए कह दिया था क्योंकि आप अपने पैशन को जीना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, और इतना बढ़िया तरीके से आपने मेरा ये व्याख्या किया है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ
0: सर। ये बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, एक नेचर लवर से बात कर पा रहा हूँ कि जो प्रकृति के बीच में जाकर नेचर का ख्याल रख रहे हैं, वन्य जीवों का ख्याल रख रहे हैं। तो सर एक बार पुनः बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है।
1: जी शुक्रिया जी।
0: सर शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आप मुझे बताएं, मेरे श्रोताओं को बताएं कि growtrees.com के बारे में, इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी बिल्कुल करें। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि growtrees.com जो है एक सोशल इंटरप्राइज है, और ये आज लगभग 12 साल पहले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2010 को हमने चालू किया था। और जब चालू किए थे तो उस समय हमारा एक मकसद था, तो मकसद ये था कि हमने ये देखा कि उस वक्त, मुझे आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो 80s और 70s के दौर में, 90s के दौर में ग्रीटिंग कार्ड दिया करते होंगे अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को जन्मदिन से, नए साल से वगैरह। तो हमारे बीच में उस समय आर्ची हॉलमार्क की ग्रीटिंग कार्ड देने की प्रथा थी 80s-90s में उस टाइम पर। तो जब ये चालू किया गया इस 2010 में, तो हमने सोचा कि क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लाएं जहां हर व्यक्ति अपने खास दिनों को जो सेलिब्रेट करने के लिए जो ग्रीटिंग कार्ड या उसके बदले में जो फ्लावर के गुलदस्ते होते हैं, चॉकलेट बॉक्स होते हैं, देते हैं, उसकी जगह में वृक्ष लगा करके, रियल पेड़ लगा कर, पौधे लगा करके उसको डेडिकेट करें गिफ्ट के रूप में।
0: क्या बात,
1: ये आइडिया था जिसको हम बहुत साधारण भाषा में अपने टैगलाइन में बोलते हैं ग्रीट विथ ट्रीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीट विथ ट्रीज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने चालू किया, और हमने ये देखा कि अधिकांशतः, मतलब मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा इतने साल के, जो हमने कहा 20 साल के करियर में
0: जी,
1: जो पेड़ से प्यार नहीं करता होगा। लेकिन मैंने जो ये देखा कि चैलेंज क्या है कि लोगों को ये नहीं पता है कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है वगैरह वगैरह, है ना, टाइम नहीं है, बिकॉज हर आदमी को लगता है कि कोई और देखभाल कर लेगा, कोई और पेड़ लगा देगा। तो ये चीजों को दूर करने के लिए हमने growtrees.com को चालू किया, और आज 12 साल में हमने एक मकसद को काफी हद तक अचीव करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी तो पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि आज भी लोग जो है हर दिन अपने जन्मदिन पर अपने खास दिन का वृक्ष लगाकर सेलिब्रेट करने लगे हैं। ऐसा फिलहाल माहौल नहीं बना है, बन जरूर रहा है, नहीं बन नहीं गया। तो यही मॉडल है जिस पर हमने काम शुरू किया।
0: जी बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। इस बात के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, आपके लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना खुश हूँ, एक पर्यावरण प्रेमी से मैं बात कर रहा हूँ जो कि पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि विक्रांत जी, एक पौधा मैंने लगा दिया, उसको सींच दिया, जब वो वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उस वट वृक्ष के नीचे एक गर्मी में, एक तपती गर्मी में बंदा आकर रुकता है, अपनी प्यास बुझाता है, छांव में बैठता है, बड़ी खुशी होती है कि मेरा एक पौधा आज बहुत बड़ा रूप उसने ले लिया है। तो सर अभी आप बातों में हमें बता रहे थे कि लोगों को ये थोड़ी जानकारी नहीं है कि कौन सा पौधा लगाना है, किस मौसम में लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता पाएं।
1: जी, हमने इन्हीं सवालों को ध्यान रखते हुए, चैलेंजेस को ध्यान रखते हुए, हमने तय किया कि growtrees.com भारत के विभिन्न राज्यों में काम करेगा, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए है ना, किसी भी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा, चालू करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में वृक्षारोपण का काम शुरू हो गया, गड्ढे लगना शुरू हो गए है ना
0: जी,
1: वहाँ पौधे अभी लगेंगे, तो वहाँ पर जो हम पौधे लगा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पर ताशीकाम नेशनल पार्क है, ताशीकाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताशीकाम नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पर हंगुल एक इंडेंजर्ड प्रजाति है। हंगुल एक तरह का डियर की तरह होता है, लोगों को समझाने के लिए, रॉयल स्टैग जिसको बोलते हैं, तो ये जो प्रजाति है हिरण की तरह देखने वाला, बहुत ही अब दुर्लभ होते जा रहा है, तो वहां पर हम उनके जो हैबिटेट है, जो उनके जंगल है, जिस पौधों को वो ज्यादा पसंद करते हैं, उस तरह के पौधों को हम वहां लगा रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो पौधा जो वहां के लिए लोकल हो, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन में फेवरेबल हो उसके लिए, और वहां के लोकल लोगों के द्वारा मॉनसून सीजन में ही लगाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी लगाते हैं, हम हमेशा पौधे वहां के
0: मौसम के हिसाब से
1: ध्यान रखते हुए लगाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया जम्मू कश्मीर का, वैसे ही आप एग्जांपल दीजिए कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में हम मैंग्रोव लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव जो होता है, ये समुद्र, बहुत से लोगों को मैंग्रोव पता ही नहीं था है ना, और शायद आज ही नहीं पता बहुत लोगों को। मैंग्रोव जो होते हैं खास करके समुद्री एरिया में, जो समुद्र तट से सटे हुए एरिया होते हैं, वहां पर उनके जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। अगर मैंग्रोव्स रहते हैं तो समझिए कि आपका वहाँ बाढ़ का जो तकलीफ होता है, फ्लड का, सुनामी का,
0: रुक जाता है, आई थिंक
1: वो काफी कम हो जाता है। उसके बाद में आपका जो वृक्ष हम मैंग्रोव लगाते हैं, उस मैंग्रोव के चलते काफी कार्बन जो है अवशोषित होता है, जो समुद्र के इसमें हम अवशोषित कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जो हम सामान्य बोलचाल बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को डेवलप करने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये वृक्षारोपण कब होगा? ये वृक्षारोपण होगा सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज सदर्न पार्ट में बारिश लेट से जाती है। तो मैं आपको बेसिकली जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी का एग्जांपल इसलिए दिया कि आपके श्रोता ये समझे कि वृक्षारोपण हम रैंडमली कहीं भी नहीं लगा देते हैं। हम वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के मॉनसून को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की यू नो जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए उन पौधों का सिलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से नर्सरी बनता है और पेड़ लगाते हैं वहाँ पर।
0: नाइस nice.
1: क्योंकि nice. अगर मैं आपको एक एक करके पौधे बताऊंगा तो कम से कम सैकड़ों पौधे हैं ऐसे, और आप कंफ्यूज होंगे। तो हम रूल समझ जाइए आप।
0: जी जी, मैं समझ गया।
1: पौधे जैसे दिल्ली के लिए जो बेहतर है, हम दिल्ली में उस वक्त में मॉनसून जब आएगा तो दिल्ली के हिसाब से पौधे लगाएंगे, है ना
0: जी। आपने इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल का जवाब दे दिया, जो मैं आपसे आगे चलकर बात करने वाला था, कि आपकी संस्था पारिस्थितिक तंत्र में किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है। आप उस एरिया की भौगोलिक परिस्थिति को पहले जानते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वहां जाते हैं, आपकी टीम जाती है, और उसके अनुसार, मौसम के अनुसार ही आप वहां पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो सर, ये जो सिलसिला है बातों का लगातार जारी है। यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आप नेचर लवर हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि म्यूजिक आपके आसपास ना रहता। तो कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास हो, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो, वही गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे।
1: एक बड़ा अच्छा गाना है, बारिश के लिए होता है, बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा।
0: हर कोई ही सुनना चाहता है, हर कोई ही चाहता है कि बारिश की बूंद तन पर गिरे और इंसान झूम जाए, प्रकृति झूम जाए। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा ही, कहीं जाएगा मत। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं growtrees.com के सीईओ विक्रांत जी, जो कि इस क्षेत्र में काफी अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेचर लवर हैं, प्रकृति के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वन्य जीवों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया गगन जी और आपके श्रोता जो मुझे अब तक सुन रहे हैं
0: जी। थैंक यू सर। सर मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब लगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, सब कुछ सेटल था, कहीं ना कहीं एक चीज कोई सामने आई होगी या आपने कुछ सोचा होगा, देखा होगा कि मुझे नेचर के लिए काम करना है, वन्य जीवों के लिए काम करना है, वन्य अपराधों को रोकने के लिए काम करना है।
1: मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ जिससे लगे अरे कुछ डिफरेंट है। मेरे लाइफ में बहुत साधारण सी घटना ने ही मुझे प्रभावित किया। वो घटना ये है कि मेरा जन्म जो है एक ऐसे शहर में हुआ था जिसको भारत में ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के नाम से जानते हैं। जी, जमशेदपुर के नाम से शहर है।
0: जी जी,
1: मुझे नहीं पता आप कितने श्रोता जानते होंगे, जमशेदपुर एक शहर है जो झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, और वहाँ काफी ग्रीनरी है। अगर कभी आपके श्रोता जमशेदपुर के बारे में जानेंगे लिखेंगे लिखेगा तो मेरे बचपन जो है ना वो आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना, नीम के पेड़ पर चढ़ जाना, बचपन में छुपा छुपी के खेल खेलना, तो इससे जुड़ा रहा है। और मैं जब पेड़ों के साथ इतना जब खेला हूँ, मेरे घर के आंगन में दो चार पेड़ है, तो जब ये सब चीज देखकर बड़ा हुआ और जब कॉर्पोरेट दुनिया में जब मैं आया और मेरी तबादला मुंबई हो गई है ना, और उसके पहले मैं दिल्ली में था इनफैक्ट एक साल लगभग, तो मुझे दिखा गुड़गांव तरफ में या जिस तरफ में डेवलपमेंट के नाम पर कितने बढ़ गए हैं।
0: जी,
1: डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो शायद किसी ने सोचा नहीं। डेवलपमेंट इज गुड, इट इज इम्पोर्टेंट, उसको हम ना नहीं कह रहे हैं, बट आप किस कीमत पर उस डेवलपमेंट को पा रहे हैं ये परखने की आवश्यकता थी।
0: जी,
1: तो जब मुंबई में मैंने देखा कि हर तरफ से कॉन्क्रीट जंगल बने जा रहे हैं, हर दूसरे स्टेशन पर आप जाएंगे वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, यहाँ पर फ्लैट उपलब्ध है, यहाँ ये फ्लैट उपलब्ध है, और मजे की बात ये है कि आज आप देखिए हर फ्लैट हर डेवलपर यही कह रहा है कि इतना खुला स्पेस है, इतना ग्रीनरी है, इतना पेड़ है, उसकी कीमत ले रहे हैं। तो भैया इसी पेड़ को काट कर आपको घर क्यों बना देते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल होता है।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही सवाल है आपका।
1: हम इंसान ही हैं जो पहले पेड़ को काटेंगे, फिर घर बनाएंगे, फिर वहाँ पेड़ लगा कर दिखाएंगे कि हम इतने ग्रीन एरिया में रहते हैं, तो भैया की कीमत ज्यादा लगेगी घर की।
0: जी जी,
1: तो कहीं ना कहीं आप हर आदमी आप देखिएगा इन जनरल, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जमशेदपुर बॉम्बे या दिल्ली की बात नहीं कर रहा,
0: पूरे भारतवर्ष या विदेशों में भी,
1: जो भी घर आप देखिए जिसके आस पास वृक्ष होते हैं, हरियाली होती है, ओपन स्पेस होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। तो जब आप इस बात को मानते हैं कि वो वैल्यू बढ़ा रहा है, तो फिर ये पेड़ काटना ही क्यों है? है ना?
0: जी जी।
1: और दूसरा तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत करते हैं या सही करते हैं, वो उनका अपना नजरिया है देखने का, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, है ना, गवर्नमेंट ने खराब कर दिया या उस एजेंसी ने खराब कर दिया। हम खुद क्या कर सकते हैं इसकी बात हम नहीं करते हैं।
0: क्या बात, बहुत खूब।
1: तो हमें वो लगा ठीक है, ये शायद वो एक्टिविस्ट का काम है, उनका काम करना है, पॉलिटिशियन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल, मेरी जो जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो क्या है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी बनती है वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करूँ, रेदर देन कि लोग क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। या तो आप उस काबिल बन जाइए कि आप उसको रखवा दें, या तो फिर आप भाई आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। ये सोच करके हमें लगा कि लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स प्लांट होप, लेट्स प्लांट फ्यूचर, है ना।
0: जी,
1: क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चे लोग बोलते हैं अरे विक्रम भाई आप 100 पेड़ लगा रहे हैं, वो 100 पेड़ में से शायद 25 पेड़ बड़े होंगे, है ना, कुछ तो पेड़ आधे बीच में मर जाएंगे, उससे बढ़िया है कि आप एक पेड़ जो कट रहने से बचा दीजिए। आप देखिए उस एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए मुझे बहुत फाइट करना पड़ेगा, तो भी गारंटी नहीं कि बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज वो अलग अलग एजेंसी की अपनी भी आवश्यकताएं हैं। लेकिन मैं जो 100 पेड़ लगा रहा हूँ तो 100% पता है कि भैया वो तो मेरे हाथ में है, किसी से परमिशन नहीं चाहिए, मैं खुद जाकर पेड़ लगा सकता हूँ। और मजे की बात है कि वो जो पेड़ लगाऊंगा वो आने वाले 25 पेड़ आपने खुद माना कि जिंदा रहेंगे कुछ साल बाद, 25 पेड़ में कितने फायदे होंगे आप ये सोचिए।
0: बहुत
1: तो हमारे हाथ में क्या है वो ध्यान दें आप ना।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर।
1: तो ये सोच करके ही फिर मैंने ध्यान दिया कि ग्रीन ट्रीज प्लांट करिए, पेड़ को लगाइए, और रेदर देन आप जो कहते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस देन टीच, मैं बुरा मत मानिएगा, मैं जब खास करके ये मेट्रो सिटीज की बात समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पर इंटरव्यू लेता हूँ कभी और कोई कैंडिडेट आता है कहता है कि सर मैं आपके साथ यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैंने पूछा ओके वेरी गुड, आपने कभी महुआ का पेड़ देखा है? महुआ? तो कहते हैं सर महुआ होता क्या? मैंने कहा ओके महुआ नहीं देखा आपने, मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि भैया आपने कभी शरीफा का पेड़ देखा, कस्टर्ड एप्पल का? तो नहीं देखा है। मैंने पूछा लास्ट पेड़ कब लगाए थे? तो मनी प्लांट लगाए थे, उसको ही पेड़ मानते हैं वो। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि हमारे अभी जो यूथ हैं, जो लोग हैं, उन्हें पेड़ ही नहीं पता है कि कौन से पेड़ कहाँ होते हैं, ये नहीं पता है कि
0: सर। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि मेरा जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था। जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, उसे मालूमात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि आपने दो बातें उनसे कहीं या पूछा जाना समझा कि आप कितना जानते हैं, नेचर को कितना जानते हैं, तो किस तरीके से फिर किस तरीके से आप आकलन कर पाते हैं कि ये बंदा मेरे साथ जुड़कर नेचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा या फायदेमंद रहेगा, या यूं कहें कि वॉलंटियर आपसे कैसे जुड़े? कुल मिलाकर अगर मैं बात का एक सार जानना चाहूं तो
1: हमारे पास वॉलंटियर्स की अपॉर्चुनिटीज काफी कम होते हैं। क्यों मैं कम रखता हूँ? क्योंकि हमारा ऑफिस टास्क नहीं होता है, ठीक है, और हमारा जो वर्क है वो बहुत ही सीजनल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर्सरी का जो काम है वो दिसंबर से लेकर के जून तक चलता है, वो तभी ही हो सकता है, जून के बाद नर्सरी नहीं बन सकता है, ठीक है। वैसे ही जो गड्ढे करने का काम है वो जून के पहले होने हैं, है ना। प्लांटेशन का काम जो है वो जुलाई से होने हैं, वो मैं चाह के भी पहले नहीं कर सकता हूँ। तो ये बहुत सीजनल वर्क है, वॉलंटियर हमेशा आपको सीजनल मिलते जाए इसकी गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हम वॉलंटियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फेलो की तरह लेते लोगों को जो कम से कम एक साल का कमिटमेंट लेकर के आए, वो फेलो की तरह हमारे साथ काम करे, और अगर उसको लगता है कि वो बेहतर कर सकता है और हमें भी लगता है तो हम उनको अपने ही कंपनी में या किसी भी ऐसे इन्वायरमेंटल कंपनी में उनको जॉब ऑफर भी करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अभी आप रेडियो जॉकी है और आप बहुत अच्छा लोगों को कम्युनिकेट करते हैं और आपको मन करता है कि नहीं मैं अभी कम्युनिकेशन में ही काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं ग्रोथिस के साथ या किसी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ में आपकी जो क्वालिटी है उसको पेड़ के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पेड़ के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक पौधा है जिसको आपने आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले लगाया था, आम का पौधा, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या आप उस आम के पौधे की कहानी उसकी जुबानी बता सकते हैं आप?
0: बहुत खूबसूरत, नाइस।
1: अगर आप बता सकते हैं कि हाँ मैं एक आम का पौधा हूँ, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, फिर जब मैं छोटा था तो एक बार मुझे लू लग गया था तो पानी की आवश्यकता पड़ी तो फिर मेरे घर वालों ने पानी डाला मुझे ऊपर,
0: जी जी।
1: अगर आप उसकी कहानी सुना पा रहे हैं देन तो मुझे लगेगा कि आपने वो दम है और आप हमारे फेलो बन सकते हैं।
0: नाइस,
1: नाइस। एग्जांपल दिया ना आपको?
0: नहीं, मैं समझ गया,
1: है ना।
0: जी जी, यानी कि मैं इस बात को ऐसे ले सकता हूँ कि थोड़ा जानना समझना जरूरी है कि उसके अंदर वो लगन है प्रकृति के बारे में, वो कुछ करना चाहता है, नेचर को कुछ देना चाहता है, समय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कहीं कोई वृक्ष अगर कट रहा है तो अपना इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए कि उसको रोके, दो पौधे लगाए, लोगों को अवेयर करे। बाकी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO मिस्टर विक्रांत जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है। विक्रांत जी, कोई और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जो सुनाना चाहते हो हमारे लिसनर्स को?
1: बहुत सारे गाना है। एक गाना तो जैसे आप थोड़ा ये संगीत जो है आपका इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा, मतलब बारिश से जुड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं गाना है कि तुम आए तो गली में चांद निकला।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत
1: गाना है।
0: जी जी,
1: गली में चांद निकला,
0: गली में चांद निकला,
1: आप हैं गली में चांद निकलवा दे तो बड़ा अच्छा।
0: जरूर जरूर जरूर, देखिए हम दिन में चांद निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आइए ये गाना सुनते हैं। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO विक्रांत जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, पेड़ों का हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो ये सच है कि कहीं ना कहीं वातावरण में शुद्ध वायु की कमी है। मैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं तो ये सच बात है कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, कि जिसकी वजह से यहां लोग रोजगार के लिए आना तक नहीं चाहते, यहां से दूर भागना चाहते हैं। खैर, जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो वाकई बहुत खुशी होती है। जी हाँ, आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक शख्सियत जुड़ रही है, मिस्टर विक्रांत जी, जो कि growtrees.com के सीईओ हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी।
0: सर, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर, क्योंकि मैं एक नेचर लवर से बात कर रहा हूं जो कि लोगों का ख्याल रख रहे हैं, वातावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज सर, हम देखते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, वो वाकई कहीं ना कहीं हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे जो मंत्री साहब हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि हम जब रोड बनवाते हैं तो ठेका देते हैं पौधे लगवाने का। लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते, यानी कि वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे होते। और उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि अगर पौधे नहीं लगेंगे तो मैं पैसा रोक दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सच्ची, देखिए सर, हम पैसा ले रहे हैं और उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहे, तो फिर जो दूर दराज व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहा है, तो इस तरीके से अगर ये सब चलता रहा तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, जब सरकार को एक आगे आकर ये अपनी बात रखनी पड़ती है इस तरीके से?
1: देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे तो अभी आपने जो पहला लाइन बोला ना, वो लाइन ही जचा नहीं। जैसे एग्जाम्पल तो आपने कहा कि एक नेचर लवर है जो हम सब ने पेड़ लगा, मैं किसी के नहीं लगा रहा, मैं खुद के लगा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के लगा रहा हूँ। सो ये धारणा हटा दीजिए दिमाग से कि कोई किसी के लगा रहा है ना। हमारा दिमाग में ये चीज जो है ना, बचपन से घुसाने की आवश्यकता है हर बच्चों को। भाई साहब, जो पेड़ है ना वो बोल नहीं रहा आपसे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब भी पेड़ नहीं रहेगा आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे।
0: जी जी।
1: बिना, लोग कहते जल ही जीवन है, मेरा तो मानना है जल कब है, जब जंगल है। जंगल है तभी जब आप वृक्ष लगा रहे, तो जंगल है तो जल है, जल है तो जीवन है।
0: क्या
1: जंगल ही जीवन है ना। तो आप जंगल से तो नहीं जा सकते,

0: हम जंगली ही थे, हम जंगल से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचेंगे हम जंगल से दूर कर ले अपने आप को, तो आपकी आपकी हैसियत नहीं कि आप रह पाए।
1: जी
0: ठीक है, आप बिना जंगल के, बिना पेड़ पौधों के आपकी सर्वाइवलिटी ही नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप कोविड के टाइम पर सब लोग ऑक्सीजन के लिए इतने मारा मारी थे, है ना, किसके लिए भाई, ऑक्सीजन के लिए। बड़े बड़े लोगों की फोन आ रहे थे, मुझे कितने लोगों ने कहा विकास सर आप तो ये मिनिस्टर को जानते हैं, आप उनको जानते, थोड़ा फोन करके ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। मैं कह रहा था ठीक है, उस वक्त की सिचुएशन समझ में आपको अभी भी नहीं आ रही है, ये शर्म और लानत की बात है हमारी इंसानियत पे। भाई साहब आज वो ऑक्सीजन जो आप खरीद रहे थे वो फ्री में कहीं मिल रहा है आपको। आज सोचिए कि क्या आपके घर के सामने में पेड़ आता है, मैं देखता हूँ, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि घर के सामने अगर एक बड़ा पेड़ आ जाए तो बालकनी से व्यू खत्म हो जाने के लोग पेड़ कटवा देते हैं।
1: जी जी आप सही कह रहे हैं।
0: आप तो ये जो कह रहे हैं ना कि वो रोड किनारे जो बिल्डर ने नहीं किया वो नहीं किया, तो ये उन बिल्डरों के लिए भी, अगर वो आपके श्रोता है सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी अपील करूंगा कि भाई साहब ऐसी मूर्खता ना करें। आपको तो अपने बच्चों को देवर से बताना चाहिए कि भाई आप पेड़ लगाओ तो ही आपके जीवन है। अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पैसा लेकर के नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये
1: गुनाह
0: है के पॉइंट से कहूँ तो पाप है, और साइंस और हमारे समाज की तो क्रिमिनल ऑफेंस है ये।
1: जी
0: दोनों है। आप सोचिए कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं विक्रांत जी एक बात बताइए, एक पेड़ में लगा रहा हूँ उस पे कितने लोग निर्भर होते हैं। हमने कहा कभी पेड़ को करीब से जाकर देखिएगा, इतने छोटे छोटे चींटी, इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उसमें, रेप्टाइल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। आप सोचिए कि उतने सारे जान जीवों को, मतलब उतने सारी आत्माओं को, जीव को आपने घर दिया,
1: बेघर कर दिया,
0: उनको रहने का जगह दिया, आपने आश्रय ना दिया। आप सोचिए कि आप एक पेड़ से कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हर आदमी इंसान को ही फायदा पहुंचाए जरूरी नहीं है, है ना। अभी देखिए मैं आज ही न्यूज पढ़ा था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी बैन किया कि पहले क्या थे कि जो जंगलों में जो जीव जंतु मरते थे, है ना, उनके कारकस को जला दिया जाता था, ठीक है, या दफन कर दिया जाता था, ठीक है, या तो जला दिया था या दफन कर दिया था। अभी आज ही न्यूज पढ़ा था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है गवर्नमेंट ने कि अब भविष्य में सिवाय टाइगर के किसी भी जानवर के कारकस को, उसके डेड बॉडी को ना तो दफन किया जाएगा ना जलाया जाएगा। और उसके पीछे जानते हैं लॉजिक क्या है उनका, सेम जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर मान लीजिए हम उसको छोड़ देते हैं,
1: छोटे छोटे जीव,
0: कितने सारे फंगस, कितने सारे दूसरे जानवर जो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था कि अगर हाथी का कारकस पड़ जाता है तो वो पॉर्चुपाइन एंड हाइना के लिए वो कैल्शियम का काम करता है,
1: जी,
0: जब वो नोज से खाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर कितने सारे फंगस, उसमें जमीन में नाइट्रोजन फिक्सअप करता है। आप समझ रहे हैं कि कुदरत में कितना बढ़िया उसका रोल प्ले किया गया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा बचा करके हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी मुझे तो लगता है कि आपने अगर पैसा दे दिया वही बहुत बात है, अगर दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है।
1: जी जी जी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए करें, अपने पर्यावरण के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, जैसा कि आपने हमें कहा। जी, और साथ ही साथ आपने हमें वाकई डिटेल में बताया सर कि किस तरीके से जो वन्य जीव हैं, एक अगर कोई वन्य जीव मर जाता है, जिस तरीके से कोर्ट का आपने वर्डिक्ट यहां जिक्र किया कि पहले उसके शव को दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, लेकिन अब आगे से ऐसा न हो, क्योंकि उसके ऊपर भी कई वन्य जीव निर्भर करते हैं। सर, जंगल जब कट रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीव भी बेघर हो जाते हैं और वो शहर की तरफ रुख करते हैं, और फिर इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन वन्य जीवों का खात्मा कर रहा होता है, वाकई बहुत दुख होता है। तो कहने का आशय मेरा यही कि आप सर, आपकी संस्था और आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, और यही जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जब ये बातें जाएंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आएगी। तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके जरिए कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो साथ ही साथ मैं जी जी
0: जैसे अभी हमारा भारत में 23 राज्यों में काम चलता है, ठीक है, तो जब हम कहते हैं काम चलता है तो वहां पर सीड कलेक्शन, नर्सरी के लिए बीज को कलेक्शन करना, नर्सरी बनाना, गड्ढे करना, पौधे लगाना, उसका देखभाल करना, ये सब उसका हिस्सा होता है। इस दरम्यान में हम कोशिश करते हैं कि खास करके आदिवासी समुदाय के महिलाओं को अधिकांश रूप से रोजगार मिले। आज भारत में हमने लगभग 1 करोड़ से ऊपर पौधे लगा चुके हैं,
1: बहुत,
0: और हमने लाखों कार्य दिवस हमने सृजन किए हैं अभी तक, है ना। इसमें हमने कोशिश की है खास करके महिलाओं को, जो कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की है। उसके साथ ही साथ में जब लोगों को लगता है ना जंगल या पेड़ जो है वो ऑब्स्टिकल है, बाधा है उनके डेवलपमेंट में, है ना, इसीलिए तो काट देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है, ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सबसे बेस्ट उपाय है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपने एक महुआ का पेड़ ले लिया, आप एग्जाम्पल महुआ, मैं बता दूं कि ये जो ट्राइबल बेल्ट है आपका झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट में काफी होता है, ठीक है। और एक एक विशाल पेड़ होता है जिसके जो फूल होते हैं उस फूल का नॉर्मली जो वहाँ के ट्राइबल्स होते हैं वो प्रयोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, महुआ का जूस बनता है, जली बनता है, यू नो उसके अचार बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, ठीक है। अब सोच, अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया था महुआ बोर्ड भी बना रखा उसके लिए। अब एक जो यू नो विकसित महुआ का पेड़ है वो साल में लगभग 20 से 25 किलो महुआ का फल देता है, 20 से 25 किलो एक पेड़। अब 20 से 25 किलो अगर महुआ का फल है और उसका बाजार में लोकल मंडी में भाव है 25 रुपए किलो, ठीक है, तो समझिए कि एक पेड़ से लगभग 500 रुपए का उसको फायदा हो गया एक पेड़ से। अब अगर मान लीजिए हमने कहीं 1 लाख पौधे लगाए हैं तो आप सोचिए कि 1 लाख पौधे गुने 500 रुपए कितने हो गए,
1: जी जी
0: उतना रुपए हर साल उस गांव की आमदनी हो गई, आप समझ रहे हैं ना,
1: जी जी।
0: तो ये जो मैथ्स है, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये संबंध की आवश्यकता है। उस महुआ को पेड़ को अगर काट करके वहां पर आप कुछ और बना दिए होते हैं बिल्डिंग या कुछ भी, तो उन मजदूरों को एक बार मजदूरी मिलती है, कहानी खत्म।
1: सही बात
0: है। यहाँ से मैंने 1 लाख पौधे लगाए, वो आने वाले 50-60 साल तक उनको पैसा मिलता रहेगा उसमें,
1: जी।
0: ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, इसकी बात मैं करता हूँ। और इससे ज्यादा जो ऑक्सीजन मिलना है या बाकी जो फायदे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तुलना ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं बैम्बू लगाता हूँ, है ना, बांस लगाता हूँ नदी के किनारों में ताकि मिट्टी का कटाव बचे, वो एक एक बांस जो है वो 5 से 6 साल बाद में हार्वेस्ट के लायक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उसको हार्वेस्ट कर एक बांस आप लगाइए, अभी बांस का पौधा कभी आप देखे होंगे वो झुंड में होता है ना, एक बांस आप लगाएंगे तो कम से कम 50 बांस उसमें निकल जाता है, 50
1: जी।
0: अब 5 साल के बाद आप उसको बाकी जो पौधे का उसमें 50 शूट्स निकले हैं उसको आप हार्वेस्ट करते हैं तो एक की कीमत लगभग 50 रुपए है लोकल मंडी में, ठीक है, बाहर में 100 रुपए मिलते हैं। अब मान लीजिए कि हर 5 साल में एक किसान ने एक बांस लगाया और उसे 50 पौधे निकल गए, 5 साल बाद में से उसमें से 40 पौधों को हार्वेस्ट कर सकता है, तो 40 पौधे हार्वेस्ट किया तो 50 रुपए के हिसाब से कितना हो गया आप देख लीजिए,
1: जी जी जी, नाइस नाइस।
0: ऐसे करके हर 5-6 साल में फसल ले सकता है। तो और बांस जो होता है बहुत ज्यादा कार्बन भी अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है,
1: क्या बात है, नाइस नाइस। विक्रांत जी, मेरे पास अगर वो कहते हैं ना कि एक राइट होता, एक अधिकार होता, जिस तरीके से लोग जब कोई सराहनीय कार्य कर रहे होते हैं, मानक की उपाधि दी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपने पीएचडी कर रखी है इस क्षेत्र में, तो मैं आज आपको डॉक्टरी की उपाधि दे देता। रियली नाइस सर, रियली नाइस सर। बाकी आप बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये सच बात है जो आपने उदाहरण हमारे सामने रखा कि जब कोरोना के समय में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत थी तब पेड़ पौधों की कीमत हमें समझ आ रही थी। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हमने नेचर का ख्याल रखा तो निश्चित तौर पर नेचर हमारा ख्याल रखेगी, अदरवाइज नेचर जब रौद्र रूप अख्तियार कर लेगी तो फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा।
0: बिल्कुल सही बात, कोई नहीं बचा पाएगा।
1: लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहे growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच गगन, एंड रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यू नो जो आप काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का कम्युनिकेशन के थ्रू, बहुत बढ़िया।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है तब जब आप एक पौधा लगाते हैं और उसके बाद वही पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मिस्टर विक्रांत को हमने ये कहते हुए सुना कि अक्सर हमने जिंदगी में सुना है लोगों से कि जल ही जीवन है, लेकिन उनका मानना है कि जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तभी जीवन है। तो इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए, नेचर से प्यार करिए, और नेचर बदले में हमें बहुत कुछ देती है। तो इसलिए पौधे जरूर लगाइए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनोशारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म होगी क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:15 हो चुके हैं। 10 तारीख है यानी कि बुधवार का दिन। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है तो पानी भरपूर भी।

लीजिएगा, शिकंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी पीजिए, वो फल खाइए जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में होता है ना। और जब भी घर से बाहर निकले तो छाता लेकर निकलिएगा, बच्चों का, बुजुर्गों का और बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखेगा। सुनो शादा 90.8 FM हमेशा आपको अप टू डेट रखता है, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें मैं आप तक पहुंचा रहा होता हूँ। कैसे आपके हाल चाल, एक छोटा सा कॉल कर आप मुझे बता सकते हैं, नंबर है वही जाना पहचाना जो अक्सर बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ, 120-40-60-205, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, 120 शहर का STD कोड लगाना ना भूलेगा, 40-60-205। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
3: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
2: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: हाँ माँ जी।
5: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
6: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। जनाबे आली, मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ चले, कहीं कोई दिक्कत परेशानी यानी कि विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए जरूरी है कि हमेशा सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, क्योंकि यहां से मैं हमेशा आपको अप टू डेट रखता हूं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। सच बात तो यह कि सुविधा शुल्क अगर आपको कहीं देना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है, बशर्ते जब तक सुविधाएं हमें मिल रही हैं। सुविधा शुल्क अगर आप देते हैं और वहां जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, नदारद हैं, तो दिक्कतें परेशानियां तो हमारे सामने होती हैं ना। रोड टैक्स की बात हो, टोल टैक्स की बात हो, या इससे इतर में अगर बात करूं, रोड जैसे बहुत अच्छे बन रहे हैं, कहीं कहीं दिक्कतें परेशानियां होती हैं, तो सरकार उस पर काम भी कर रही है, करना भी चाहिए। जैसे कि भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया वर्तमान समय में, जो हम देख रहे हैं, अपडेट हमें बता रही है, वैसे तो सारे काम हो ही रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, दिल्ली देहरादून का जो हाईवे बना है, बहुत कम समय में आप देहरादून पहुंच सकते हैं। नमो भारत का मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में एक परीक्षा थी, मैं अपने सिस्टर को परीक्षा दिलाने के लिए नमो भारत के जरिए मेरठ गया, मेरठ से फिर मैं दिल्ली आया, यानी कि बहुत कम समय में वो सफर आप तय करते हैं। अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 8 जून को 1.25 लाख यात्रियों ने सफर किया है। गर्मी एक वजह है, सच बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि बहुत कम समय में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। तीसरी बात यह, हाँ ननी हाल जा रहे हैं लोग, ददी हाल जा रहे हैं और सब पिकनिक के तौर पे मजे ले रहे हैं। हाँ, सच बात तो यह भी है कि चलो एक बार देखें तो सही। जब आप एक बार देखते हैं और सुविधा जब आपको मिलती है तो वो शुल्क देने में आप परहेज नहीं करते, और सुविधा जब आप देखते हैं तो बार बार आने का मन करता है। गुड जॉब। अपने आप को सुधारो बेटा, ऐसा अगर आप हैं तो क्यों है। छोटे से ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
1: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
0: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
1: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
0: कल नहीं, अभी।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या बात है, इश्क जरूरी है तो पढ़ना भी जरूरी है, आगे बढ़ना भी जरूरी है, करियर प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: हाँ गुड मॉर्निंग, उससे इश्क कर लो बेटा, आगे बढ़ जाओगे, तरक्की करोगे, बरकत करोगे। शमाना मतलब सोचो पीएचडी एमएससी वाले एक कांस्टेबल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मतलब एक जॉब और एक कहते ना एक कनार सौ बीमार।
0: हाँ आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी है, तो ये तो होना लाजमी है ना, है ना। हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिले, उसके लिए आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उस जॉब के लिए दावेदार हो सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ नीट के बारे में, नीट के एग्जाम के बारे में, री नीट यानी कि ये परीक्षा अब दोबारा से आयोजित की जा रही है 21 जून को। बड़ी सतर्कता के साथ ये परीक्षा होगी, निगरानी में ये परीक्षा होगी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत या विघ्न बाधा ना आए। सच बात तो ये कि जब ऐसी विघ्न बाधाएं आती हैं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, हम सब परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, और सरकार अपना काम कर रही है। बहुत बड़ी सतर्कता के साथ ये परीक्षा होने जा रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, और सरकारी जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, एनटीए अपना काम कर रही है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानता के साथ ये बात रखी है कि सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, और जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा हम करा लेंगे। चलिए आने वाले समय के लिए बच्चों को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा अपना पर्चा दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, टेंशन मत दीजिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा क्योंकि गर्मी है। गर्मी के बारे में जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: यात्रीगण ध्यान दें, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
1: ये श्रोतागण है,
0: मैं देख रहा था, परीक्षा ले रहा था कि कहीं तुम सो तो नहीं गए।
1: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मौसम के मिजाज के बारे में अपडेट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रशांत महासागर में अल नीनो पैटर्न से मानसूनी बारिश में बड़ी कमी आने के जोखिम को देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसके चलते हो क्या रहा है कि 197 जिलों को फाइंड आउट किया गया है, चिन्हित कर दिया गया है, ताकि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो कहते हैं ना हमारे मंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान साहब ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और इसके जो दुष्परिणाम हैं वो कृषि पर पड़ सकते हैं। और एक योजना तैयार की जा रही है कि खाद पानी की कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन जब अलर्ट घोषित होता है, सरकार अपना काम करती है, तो हम सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं, ताकि इस धरा को, वसुंधरा को हम हरा भरा रख सकें। और दिल्ली एनसीआर की क्या अपडेट है, 11 से लेकर 13 जून तक भारी बारिश और तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे देखने को यह मिलेगा कि भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलेगी। और मंगलवार की अगर मैं बात करूं और बुधवार की, यानी कि कई हिस्सों में 120 से 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली, हल्की हल्की बारिश हुई, और हमने रास्ते में ये भी देखा कि पेड़ उखड़े हुए नजर आए। ये पेड़ टूटता है तो दिल टूटता है।
0: शाबाश मेरे लाल, इसलिए एक पौधा जरूर लगाओ। और हमने नोटिस किया है जो ग्रीनरी है ना, महामाया से आप आते हैं
1: परिचौक की तरफ, परिचौक से जाते हैं महामाया की तरफ, जो लेफ्ट राइट में आप देखेंगे जो ग्रीनरी एरिया था वो अब हरा भरा नहीं रहा, वहाँ पानी भरता जा रहा है, पेड़ सूखते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे मुझे लगता है कि इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और आपसे अनुमति ले लेने का, धुरंधर क्या कमाल कर रही है, धुरंधर द रिवेंज।

को जब OTT पर ये फिल्म आई है तो इसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट का ब्यूटीफुल ट्रैक लंबा हो, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, आए है, आए है।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं कि योग करें, हर रोज करें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहां सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। आज हम बात करेंगे योगा के बारे में, स्ट्रैप के साथ किए जाने वाले बेस्ट योगासन के बारे में। ये कुछ इस प्रकार के योग हैं जिनका अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ करना और ज्यादा फायदेमंद रहता है। चलिए बात करते हैं। योग ऋषि मुनियों के प्राचीन भारत से चला आ रहा है और आज भी इसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही प्रभावी है। प्राचीन भारत से चला आ रहा ये प्राचीन स्वास्थ्य अभ्यास आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। लोग इससे होने वाले फायदों से प्रभावित भी हैं। समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए गए और कुछ नए योगाभ्यास और तकनीकों को इसमें जोड़ा गया है। कुछ नए डिवाइस भी योग के साथ जोड़े गए, जिससे इसका फायदा और ज्यादा होने लगा। आजकल आप योग क्लास लेने जाते हैं जो वहां पर आपको बॉल और स्ट्रैप्स रखे दिखते होंगे। योगा स्ट्रैप्स बेहद फायदेमंद उपकरण है और इसके साथ योग करना और ज्यादा फायदे देता है। अब मैं आपको बात बताऊंगा 5 ऐसे योगासनों के बारे में जिन्हें योगा स्ट्रैप के साथ करना होता है और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। पहले बात करते हैं जानू शीर्षासन। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग के लिए सबसे बेस्ट योगासनों में एक जानू शीर्षासन भी है, जिसके इस्तेमाल से कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन योगा स्ट्रैप के साथ इसका अभ्यास करने से ये और ज्यादा स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ प्रदान करता है। डायबिटीज और गैस्ट्राइटिस और IBS जैसी बीमारियों से निपटने के लिए जानू शीर्षासन योग का अभ्यास स्ट्रैप के साथ ही करना चाहिए। दूसरा आसन, सुप्त पादंगुष्ठासन। घुटने, कूल्हे और कमर से जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द या तकलीफ को कम करने के लिए सुप्त पादंगुष्ठासन अभ्यास करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ साथ सुप्त पादंगुष्ठासन का अभ्यास यदि योग स्ट्रैप की मदद से किया जाए तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। रोजाना योगा स्ट्रैप के साथ सुप्त पादंगुष्ठासन अभ्यास करने से घुटने, कूल्हे और कमर के जोड़ों में होने वाले दर्द ठीक हो जाता है। हम बात करेंगे उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन के बारे में। योगा स्ट्रैप के साथ सबसे ज्यादा किया जाने वाला योगासनों में से एक उत्थित हस्त पादंगुष्ठासन भी शामिल है। योगा स्ट्रैप के साथ इस योगासन का अभ्यास करने से हाथ और पैर की मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं और खूब फायदा मिलता है। जिन लोगों को जांग की मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए ये योगासन काफी फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं प्रसारित पादोत्तनासन। ये कैसी योग मुद्रा है जो शरीर की लगभग हर एक मांसपेशी को स्ट्रेच करने में मदद करता है। पीठ, जांग और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रसारित पादोत्तनासन योगाभ्यास करना बेहद फायदेमंद रहता है। साथ ही यदि इस योगासन का अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ किया जाए तो ये और ज्यादा फायदा देता है। पश्चिमोत्तानासन। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, जिनके लिए पश्चिमोत्तानासन अभ्यास करना काफी फायदेमंद रहता है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ करना और ज्यादा फायदेमंद होता है। हफ्ते में एक या दो दिन पश्चिमोत्तानासन योग का अभ्यास योगा स्ट्रैप के साथ जरूर करना चाहिए। हालांकि यदि आप योगा स्ट्रैप का पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इस बारे में किसी अच्छे योग प्रशिक्षक से संपर्क करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि योगा स्ट्रैप के साथ ये योग अभ्यास करना ज्यादा अच्छा लगता है और बिना किसी एक्सपर्ट की देखरेख में अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फायदा होने के बजाय नुकसान आपको ज्यादा होगा। तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं कि योग करें, हर रोज करें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर रोज आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आपके साथ जुट जाता हूं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। बात हो रही है योग की। योग भारत का विश्व को दिया हुआ एक उपहार है और इसी के तहत बहुत सारी बातें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस श्रृंखला में अब बात करते हैं कि भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी अगर आप ये तीन योग और प्राणायाम करेंगे। दिमाग आपका तेज हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। भागती दौड़ती जिंदगी और कामकाज के तनाव के चलते लोगों में मेमोरी लॉस एक आम समस्या बन चुकी है, जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि कई लोगों में कभी कभी भूलने की बीमारी सामान्य रूप से जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन काफी लोगों में भूलने की ये समस्या एक गंभीर रूप भी ले सकती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो इस समस्या में काफी हद तक सुधार लाया जा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे योग आसन के बारे में जो आपकी याददाश्त की क्षमता को बढ़ाने में आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं। भूलने की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए ये योगासन उनकी याददाश्त को मजबूत करने में मदद करेंगे। बात करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन को ट्री पोज के रूप में भी जाना जाता है। इस योग आसन को नियमित रूप से करने से संतुलन, फोकस और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा इस योगासन से न्यूरोमस्कुलर में भी सुधार होता है। इसे कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। इस योग आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधा खड़े हो जाएं, फिर अपना वजन एक पैर पर लेकर आएं, उसके बाद दूसरे पैर के तलवे को खड़े पैर की भीतरी जांग पर रखें। इस पोजीशन में स्थिर खड़े रहें, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए इसी मुद्रा में कुछ देर तक खड़े रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपको अच्छा बैलेंस और दिमागी याददाश्त को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उत्थिता हस्त पादंगुष्ठासन। इसके अंतर्गत बात सामने आती है, मन को उत्तेजित करने वाला ये आसन करना काफी आसान है। इससे फोकस बढ़ने के साथ साथ एकाग्रता और इच्छा शक्ति में काफी सुधार होता है। इससे बैलेंस बढ़ाने में मदद मिलती है। उत्थिता हस्त पादंगुष्ठासन से पैरों और कोर को मजबूती मिलती है, साथ ही हैमस्ट्रिंग और कूल्हों में लचीलापन भी बढ़ता है। इसे कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। हाथ और अपने पैरों को अपने सामने फैलाएं, अपने पैर को बाहर की ओर खोलें, कुछ समय के लिए इसे मुद्रा में बने रहें। इस मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपकी याददाश्त के साथ साथ सोचने की क्षमता में सुधार हो सकता है। इस आसन को करने से शरीर के निचले हिस्से में लचीलापन बढ़ता है और पूरे शरीर का बैलेंस सही करता है। बात भ्रामरी प्राणायाम की। इस योग आसन में सांस लेने की एक टेक्निक है, जिससे दिमाग के साथ साथ शरीर को कई फायदे मिलते हैं। इस आसन को करते समय आपको गहरी सांस लेना और फिर उसे छोड़ना होता है। इस योग आसन से मन में शांति, तनाव और चिंता को कम करने, फोकस और एकाग्रता के साथ याददाश्त में सुधार लाने के लिए किया जाता है। इस आसन को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जमीन पर आराम से बैठ जाएं। अब अपनी आंखों को बंद कर लें, फिर गहरी सांस लें और छोड़ते हुए हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज करें। इस प्रक्रिया को एक से कई बार दोहराएं। देखिएगा, योग करेंगे तो निरोग रहेंगे।
1: तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं कि योग करें, हर रोज करें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। आजकल बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज योगासन करते हुए कई पोस्ट सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती हैं, जिसके बाद उनके फॉलोवर्स उन योगासनों को ट्राई भी करते हैं। अभी हाल फिलहाल में अदाकारा और योगा क्वीन मलाइका अरोड़ा का चक्की चलासन काफी ट्रेंड कर रहा है। ये योगासन एकाग्रता को बेहतर बनाने का सबसे शानदार तरीका है। मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में से एक है। उनकी टॉन्ड बॉडी और फिटनेस के प्रति उनकी लगन कई लोगों के लिए आदर्श बन चुकी है। वो कभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखने से पीछे नहीं हटती, जिसका सबूत खुद उनका सोशल मीडिया फीड है, जहां मलाइका नियमित रूप से अपने वर्कआउट की कुछ झलकियां अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अगर आप जिम नहीं जा पाते तो आप कुछ योगाभ्यास करके अपने शरीर में लचीलापन, एनर्जी, बैलेंस और मुद्रा में सुधार कर सकते हैं। योग की मदद से आप ध्यान और प्राणायाम के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद का चक्की चलासन करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इस योग आसन को काफी शक्तिशाली आसन माना जाता है। इससे तनाव को दूर करने में मदद मिलती है, साथ ही डाइजेशन में सुधार भी होता है। इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियों को टोन और मजबूती मिलती है। इसके अलावा इससे मानसिक स्पष्टता भी बढ़ती है। इस आसन को कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। चक्की चलासन, जिसे ग्राइंडिंग पोज या फिर मिलिंग पोज के रूप में भी जाना जाता है, ये योग आसन एक पत्थर की चक्की पर आटा पीसने की गोलाकार गति जैसा ही दिखता है। ये आसन डाइजेशन में सुधार और पेट की मसल्स को शानदार तरीके से टोन करता है। इस आसन को शुरू करने के लिए अपने पैरों को आमने सामने फैलाकर योगा मैट पर बैठ जाएं। सुनिश्चित करें कि आप पीठ को सीधा रखें और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। अपने पैरों को अपने शरीर के करीब लाएं ताकि आपके घुटने मुड़े हुए हों और आपके पैर फर्श पर सपाट हों। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपनी बाहों को सीधे अपने सामने कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। अपनी भुजाओं को गोलाकार गति में घुमाना शुरू कर दें, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी चक्की के पार्ट पर कुछ पीस रहे हों। इस आसन को करते वक्त गहरी सांस लें और स्थिर लय बनाकर रखें। चक्की चलासन उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो लोग लंबे समय तक बैठे या खड़े रहते हैं। इस आसन को करने से पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों में तनाव को दूर करने में मदद मिलती है। चक्की चलासन करते वक्त बरतें सावधानी। प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इस आसन को करें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसे योगासन को करने से बचें। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कोई समस्या है तो ये योग बिल्कुल भी ना करें। ज्यादा चक्कर आने की समस्या है तो भी इस योगासन को ना करें। इस योग को करते वक्त सुनिश्चित करें कि आपका पेट भरा हुआ ना हो। सुबह की जगह शाम के वक्त इस योग को करने से ज्यादा फायदा मिल सकता है। कुछ इस तरह से सावधानियों को बरतते हुए चक्की चलासन करने से आप भी हेल्थ जुड़े कई फायदे पा सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुण शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं कि योग करें, हर रोज करें। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। आइए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप को खुश रखिए। बात करते हैं गर्मियों में शरीर को ठंडा रखेंगे कुछ ये योगासन। सुबह सुबह गर्मियों में कौन सा योग है सबसे ज्यादा फायदेमंद, तो चलिए इसी संदर्भ में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गर्मियों के लिए बेस्ट योगासन के विषय में। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और खुद को फिट और एक्टिव रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां काफी जरूरी होती हैं। अगर आप कार्डियो नहीं कर सकते हैं तो योग करना काफी बेहतर होने वाला है। योग करने से शरीर को काफी सारे लाभ मिल सकते हैं, जैसे ये बहुत सी बीमारियों का रिस्क कम करता है और आपको एनर्जी महसूस करवाने में भी लाभदायक है। जैसी गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो शरीर में डिहाइड्रेशन, एनर्जी की कमी आदि होने लग जाएगी। इससे बचने के लिए योग करना एक काफी अच्छा उपाय है। तो आइए जान लेते हैं गर्मियों में खुद को एनर्जी से भरपूर रखने के लिए कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये आसन आपको मानसिक रूप से खुश और शांत रखने में भी मदद करेंगे। बात आती है पश्चिमोत्तासन के विषय में। बात करते हैं ये आसन पैरों और लोअर बैक को स्ट्रेच करने में भी लाभदायक होता है। शरीर के ये अंग गर्मियों के दौरान थोड़े टाइट हो जाते हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेचिंग करनी काफी जरूरी हो जाती है। जो लोग खुद को कूल डाउन करना चाहते हैं और रिलैक्स होना चाहते हैं, उनके लिए योग आसन बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये दिमाग को शांत करता है और ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करता है। इससे आपको काफी रिलैक्स महसूस होने में मदद मिलेगी। बात वीरभद्रासन की। ये आसन पैरों को मजबूत करने के लिए बेस्ट रहने वाला है। ये कोर स्ट्रेंथ के लिए भी लाभदायक है। ये बैलेंस और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में सहायक है। ये बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का और सर्कुलेशन को सुधारने का एक काफी अच्छा तरीका है। ये योग आसन गर्मियों के मौसम में काफी लाभदायक होता है। तो आइए आप और हम सब मिलकर योग हर रोज करेंगे, ताकि हम अपने आप को खुश रख पाए, अपने आप को एनर्जेटिक रख पाए, क्योंकि योग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने आप को रोग मुक्त रख पाएंगे। क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं, योग करें, हर रोज करें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें। 100 मर्ज की दवा है एक योग, और योग पूरे विश्व को भारत का एक उपहार है, और इसी संदर्भ में लगातार खास बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं योग के संबंध में कुछ खास बातों के विषय में। गर्मियों में शरीर को ठंडा अगर आप रखना चाहते हैं तो कुछ योगासन हैं, उनको अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको आपके शरीर में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पश्चिमोत्तासन और वीरभद्रासन। इन आसनों के बारे में हमने बातें की है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अधोमुख श्वानासन के विषय में। अगर आप बाजुओं, कंधों और कोर को मजबूत करना चाहते हैं तो यह आसन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यह आपके हैमस्ट्रिंग्स और पिंडलियों की मसल्स को स्ट्रेच प्रदान करने में भी लाभदायक है। ये ब्रेन तक ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है और इससे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में काफी लाभ मिलता है। अब बात करते हैं त्रिकोणासन के विषय में। ये आसन हिप्स, हैमस्ट्रिंग और स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए काफी लाभदायक है। इन तीनों हिस्सों की मसल्स गर्मियों में अकड़ जाती है। ये आसन पाचन और ब्लड सर्कुलेशन में भी काफी लाभदायक माना जाता है। अगर आप अपनी ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने एक्सरसाइज रूटीन में इस योग आसन को जरूर शामिल कर लें। शीतली प्राणायाम, ये प्राणायाम अपने कूलिंग प्रभावों के लिए जाना जाता है। इसमें आपको नाक के बजाय मुंह से सांस लेनी शुरू करनी है और आपको नाक के द्वारा सांस बाहर छोड़नी है। ऐसा करने से आपको शरीर में काफी कूलिंग महसूस होगी। इस योग आसन से बॉडी का तापमान कम होता है और इससे आपको दिमागी रूप से भी काफी शांति महसूस होगी। अगर शरीर में ज्यादा गर्मी महसूस होती है तो इस आसन को रोजाना सुबह और शाम के समय जरूर कर लें। इसीलिए कहा जा रहा है कि योग करें, हर रोज करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आइए हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपना ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सिमका के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें हम आप सबसे अपील कर रहे हैं कि योग करें, हर रोज करें, आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा बेहद खूबसूरत तरीका है कि योग करें। बात हेल्थ की, सेहतमंद रहना भी इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए सही लाइफस्टाइल और डाइट की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर सेहतमंद रखने के लिए सही डाइट और लाइफस्टाइल का होना बहुत जरूरी है। हम जो भी खा रहे हैं उसका अच्छा या बुरा असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। कुछ लोग इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सही डाइट न मिल पाने के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। सेहत को सही बनाए रखने के लिए प्रोटीन डाइट का होना बहुत जरूरी है, और प्रोटीन डाइट के लिए जरूरी नहीं आपको प्रोटीन पाउडर ही लेना पड़े। आप घर पर सिंपल डाइट में कुछ फूड्स को शामिल करके शरीर को पर्याप्त प्रोटीन प्रदान कर सकते हैं। हम आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देने में मदद करेंगे। नंबर वन, एग व्हाइट। जब भी प्रोटीन इनटेक की बात आती है तो अंडे का नाम सबसे पहले आता है। अंडे का सफेद हिस्सा यानी व्हाइट प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत में से एक है। अध्ययनों के अनुसार एग व्हाइट में लगभग 3.8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अच्छी सेहत के लिए डाइट में एग व्हाइट को शामिल होना बहुत जरूरी है। नंबर दो, चीज। डेयरी प्रोडक्ट्स को भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है, इसलिए इनका सेवन करना भी बहुत जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन चीज में पाया जाता है, और इसलिए यदि आपको मसल बिल्ड करना है तो अपनी डाइट में चीज को जरूर शामिल करें। नंबर तीन, सोया चंक्स। सोयाबीन और उसके अन्य प्रोडक्ट्स में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और जिनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन सोया चंक्स में पाया जाता है, अपनी डाइट में सोया चंक्स को शामिल करें, और साथ साथ आप टोफू को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर चार, बादाम। शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए बादाम का सेवन भी किया जा सकता है। USDA की एक रिपोर्ट के अनुसार 100 ग्राम बादाम में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ बादाम ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कई अन्य जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आपको भी मसल बिल्ड करनी है तो रोजाना 8 से 10 रात भर पानी में भीगे बादाम का सेवन जरूर करें। नंबर पांच, सी फूड। यदि आप नॉन वेजिटेरियन ले लेते हैं तो सी फूड आपके लिए अच्छा प्रोटीन सोर्स हो सकता है। मछली और अन्य सी फूड की मदद से काफी हद तक शरीर की प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रोटीन के साथ साथ सी फूड में अन्य कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो आपकी सेहत में सुधार लाते हैं। तो ये थी खास जानकारी योग से संबंधित। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आपसे अपील करता है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, योग करें, हर रोज करें।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनूं शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ योग से संबंधित बहुत सारी बातें लगातार मैं आप तक पहुंचाता आ रहा हूं। चलिए अब इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं कि अगर लीवर में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो कौन कौन से चार तरीके से आप अपने लीवर पर जमा फैट को हटा सकते हैं। बात करते हैं प्राकृतिक उपचार के बारे में। फैटी लीवर डिजीज आज के समय में देखा जाए तो काफी आम हो गई है। ये वो स्थिति होती है जिसमें लीवर में फैट

यानी वसा इकट्ठा हो जाता है। अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो लिवर डैमेज भी हो सकता है। ये बीमारी अधिकतर लाइफस्टाइल और डाइट के कारण ही होती है। इस बीमारी के कारण अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज इत्यादि। ऐसे में इसे मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स के द्वारा इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक शराब न पीने के बावजूद भी लिवर से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इन्हें हम लाइफस्टाइल से जुड़ी टिप्स का पालन करके ठीक कर सकते हैं। शराब का सेवन तुरंत बंद कर दें। लीवर से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण शराब का सेवन करना ही होता है। शराब का सेवन ज्यादा करने से लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और कमजोरी और पीलिया जैसी बीमारियों के लक्षण भी दिखने लगते हैं। इसलिए शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। अच्छी डाइट लें। फैटी लीवर सही करने के लिए डाइट में खूब सारी सब्जियां और फल को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही आपको दिन में कुछ समय के लिए एक्टिव भी रहना होगा। फाइबर से भरपूर सहयोग का सेवन करना भी लाभदायक होगा। बात करते हैं वजन कम करने की। मोटापे के कारण भी लिवर से जुड़ी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। इसलिए वजन कम करना शुरू कर दें। एक हेल्दी वेट बनाए रखने से लिवर की सेहत बूस्ट होती है। पुरानी बीमारियों को कंट्रोल करें। अगर आप पहले से किसी अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं तो उन्हें मैनेज करें। थायराइड भी आपकी लिवर की स्थिति को और खराब कर सकता है। इसलिए इन सभी बीमारियों को मैनेज करने के लिए अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो श्रद्धा 90.8 FM। ये विशेष कार्यक्रम आयुष मंत्रालय और सिमका के सहयोग से सुनो श्रद्धा 90.8 FM के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और आपसे अपील कर रहे हैं कि योग करें और अपने आप को निरोग रखें।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचाकर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन

अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा

सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में हम सबसे पहले बात करेंगे बागवानी की। जी हां, खेती में बागवानी तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है और इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जो हमारे युवा साथी रोजगार की तलाश में हैं, वो बागवानी के क्षेत्र में बेहतर रोजगार हासिल कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें, जैसा आप तो जानते ही होंगे, बागवानी इसे एक बार लगा देने से कई सालों तक मुनाफा आप ले सकते हैं। बागवानी अपने अंदर तमाम संभावनाएं समेटे हुए है, जो किसानों के लिए भविष्य में सुनहरे आय का एक साधन बन सकती है। किसान मित्रों, फल सब्जी की मांग बाजार में साल भर रहती है। पारंपरिक फसलों में बढ़ते नुकसान और कम होते मुनाफे के मद्देनजर अब हमारे किसान मित्र बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप भी बढ़ सकते हैं अन्य किसानों की तरह। और किसान मित्रों, वर्तमान समय में देश के बहुत से ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो बागवानी करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए बागवानी फसलों की सहायता से हमारे

किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दें कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक मिशन भी चला रही है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इस मिशन के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वैसे शहरों में सब्जी की खेती एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि हो रही है। शहरी कृषि में सब्जी की खेती से न केवल शहरों में ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति होती है, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। किसान मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि बागवानी फसलों को उगाने से हम कितनी जल्दी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप ज़रूर बागवानी करें ताकि आपका कृषि में जो खर्चा आता है वो कम हो और आपको लाभ ज़्यादा हो। किसान मित्रों, ये तो बात रही बागवानी फसलों की कि उनसे किस तरह से हम कम पैसा लगा करके अधिक लाभ ले सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं सुनील चौहान और उनके साथी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये देशभक्ति रागनी। साथियों, जब भी हम देशभक्ति रागनी सुनते हैं या देशभक्ति गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना जागृत होती है कि हमें भी अपने महान क्रांतिकारियों की तरह, जो देश के लिए मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते देश के लिए दे गए, तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए और हमें ये सोचना भी चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं उसे आप मन से कीजिएगा, निष्ठा से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तो ये भी देश की सच्ची सेवा होगी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है और इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसानों से हमारे किसान भाइयों को बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई बैंक में जाके अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बस इसके लिए उन्हें बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनके फसलों का बीमा हो जाता है। और अब वो किसान मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल नष्ट हो जाए तो उसका क्लेम आपको कैसे करना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा, तो ये बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं रविंद्र खालोर।

0: किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर से ये उपदेश, और इस उपदेश में रविंद्र खालोर कह रहे थे कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए, और जो लोग किसी को भी धोखा देते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता है, और उनको अपने पाप कर्मों का फल एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। और किसान मित्रों, इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, और हमने बताया था कि आप कैसे अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, कहां करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आपने अपनी फसल का बीमा तो करवा लिया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो अब आपको उसका मुआवजा कैसे मिले। तो किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है, फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है, और साथ ही आपको जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण करते हैं और फिर नुकसान का आकलन करते हैं, और सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक खाते में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो किसान मित्रों, बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आप अपनी फसल का जरूर बीमा कराएं। किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति रागनी, कलाकार हैं कोशिंदर खदाना।
1: बाकी सब पर

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आपसे अनुमति ली जाए। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट, खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा ₹1,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं नमस्कार।
1: दूसरे भाग की कथा सुनानी है, दूसरे भाग की कथा सुनानी है, हरिश्चंद्र की।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं। हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

सावित्री सत्यवान के साथ साथ और सत्यवान की उस झोपड़ी में पहुंच गई कि जहां सत्यवान के अंधे माता और पिता विश्राम कर रहे थे। तो दोस्तों, किस तरह से आहट सुनकर के सत्यवान की माँ सत्यवान को कुछ कारण लग गई। क्यों कि बगैर सत्यवान के तो बड़ा मुश्किल टाइम कटा करता था माँ बाप का, भला कैसे प्यार में कहते हैं। लेकिन सावित्री अपनी सासू के पांच छूने

0: तुम्हारी पुत्र बधु सावित्री भी है।
1: अच्छा, किसे मैं वर के लाया हूँ? अरे तेरा तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी।
0: लेकिन माता जी सारे भेद बता

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो प्रज्ञा 90.4 MHz, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: गई थी देखने?
1: बहुत सुंदर है।
2: नहीं जी, हम तो गए ही नहीं थे। कैसी है?
0: हम तो देखे हैं, हमारी बगल वाली चाची है ना, उन्हीं के साथ हुआ गए थे।
2: अच्छा, हमको भी चलो ना, हमको देखना।
0: अपनी छोटकी बहनिया को ले लीजिए, चाहिए देख लीजिएगा।
2: छोटकी बहनिया नहीं जाएगी ना जी, तुम नहीं जानती हो।
0: कहे नहीं
2: चलो ना।
3: बक जी, कहे लड़ रहे हो तुम लोग?
2: ये हमको लेके नहीं जा रही है, ये देख चुकी है दुल्हन आई है उनके घर ना।
3: अरे हमको भी देखना है, चलोगी?
2: चलो चला जाए।
0: किसी के साथ चले जा, हम दूर बढ़ जाएंगे तो क्या कहेंगे?
2: तो क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेना ना, चलो हमारे साथ।
3: बक जी, दुल्हनिया क्या सोचेगी?
2: कुछ नहीं सोचेगी, वो हम लोगों को थोड़ी देखेगी, हम लोग उसको देखेंगे तो शर्माएगी।
0: इसी के साथ चले जाइए ना।
2: तो मतलब नहीं जाओगी?
0: चलिए चलिए, लेके चलते हैं।
2: हाँ चलो चलो जी, तुम भी चलो।
4: अरे रूही।
0: हाँ।
4: अरे ये सारा सामान तो हटा दो, अपनी भाभी को आराम तो करने दो।
0: हाँ हाँ ठीक है, करते हैं।
4: सुबह से बेचारी थक गई है, लोग आके देख के जा रहे हैं।
0: हाँ सही कहती हैं आप।
4: हाँ हाँ सामान हटाओ तो। ए बहुरिया, तनी आराम कर लो।
2: जी माँ जी।
4: रूही।
0: हाँ।
4: भाभी को पानी दो तो।
0: अभी लावत है।
4: कुछ खाओगी?
2: नहीं माँ जी, अभी कुछ नहीं खाऊंगी।
4: अरे रूही, कहाँ रह गई?
0: हाँ माँ, आई।
4: अरे आओ नहीं, अपने भैया को तो बोल दो कि आके आराम कर ले।
0: हाँ भेज देती हूँ। भैया भैया भैया।
5: हाँ।
0: अरे वो अम्मा बुला रही है अंदर। वहाँ
5: अम्मा को कहो 2 मिनट इंतजार करे, हम दोस्तों को भेज के आ रहे हैं अभी।
0: हाँ ठीक है, बोलत है, आइए जल्दी से।
5: अच्छा अब चलो तुम लोग, आई गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अम्मा बुला रही है हमको, तुम उसे भेंट करते हम कल सुबह। अम्मा,
4: तुमको अपने दोस्तों से अभी भी फुर्सत नहीं मिल रहा है का?
5: ओ नहीं अम्मा, वो कुछ बतिया रहे थे लोग, गए सब, बताई।
4: अच्छा एक बात बताओ, ये सोची भी हो कि बहुरिया को कह दोगे तुम?
5: हाँ हाँ काहे नहीं, यहाँ रखे हैं, अब भेंट होगा तो दे देंगे हम।
4: भेंट का होगा, कल भेंट करोगे का? अरे जाओ, बहुरिया आराम कर रही है, उससे कुछ बात कर लो, बेचारी को समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या बात करे, वो हम लोगों से शर्मा रही होगी, तुमको तो बताएगी ना।
5: अम्मा वो बच्ची थोड़ी ना है, तो उसको कोई जरूरत बुझाएगा तो बताएगी आपसे।
4: चलो ठीक है, लेकिन तुम जाओ ना एक बार।
5: ठीक है जा रहे हैं, वो बाहर टेंट वाला आया है, तनी हिसाब करके फिर जा रहे हैं हम।
4: अच्छा ठीक है, चले जाना।
6: वैसे रूम में काफी अड़सा है, ठीक हो जाएगा, अभी सामान उमान है, रखा उखा है यहाँ पे। खैर वैसे तुम्हारा नाम क्या है नंदिनी?
7: घर तेरा हो गया।
0: कहीं कड़वा पे नहीं देखे थे क्या?
6: ना ही देखे रहे पर कोनो बात करने का, खैर मजा किया हो, बढ़िया है, खूब बनेगी हमारी।
7: आज से मेरा घर तेरा हो गया।
6: वैसे जब हम पहली बार तुम्हारा फोटो देखे थे तो तुम हमको बड़ा नीक लगी थी, एकदम ऐश्वर्या राय। तुम देखी थी हमारा फोटो शादी से पहले?
1: हाँ हम भी देखे थे, अम्मा के अलमारी से निकाल के, एकदम शाहिद कपूर लगे थे।
6: बहुत मजाक करती हो तुम भी। अच्छा ये देखो तुम्हारे लिए हम का लेके आए हैं, तुम सुबह से भूखी होगी ना, बगल में हलवाई खाना बना रहे हैं, उसे चुरा के तुम्हारे लिए कचौड़ी आई गुलाब जामुन लेके आए हैं।
1: लेकिन हम तो खा चुके हैं, अम्मा हमको खिला चुकी हैं।
6: खा चुकी हो
1: जी?
6: चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो एक और चीज लाए थे तुम्हारे लिए, आँख बंद करो दिखाएं। एक और चीज लाए थे तुम्हारे लिए, आँख बंद करो दिखाएं।
1: अच्छा लेकिन आँख बंद कर लेंगे तो देखेंगे कैसे?
6: अरे हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटी विथ ब्रेन, सही है सही है। अच्छा ठीक है फिर आँख बंद करो, और जब हम कहेंगे खोलने के लिए तब खोलना अपना आँख।
1: अच्छा ठीक है।
6: एक दो, देखो चीटिंग ना करो तुम अब, नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे फिर। आँख बंद करो, एक।

0: अब अपनी आँख खोलो, ये देखो हम तुम्हारे लिए गजरा लेके आए हैं।
1: अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास तो है।
0: अच्छा, तुम्हारे पास है? हम बहुत सोचे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने से पहले कि काले को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मोबाइल पर इंटरनेट पे देखे हम कि गजरा औरतों को बहुत अच्छा लगता है, तो हम ले लिए तुम्हारे लिए। खैर कोई ना, कल लगा लेना।
1: अरे नहीं नहीं, हमने जो लगाया है ना, वो तो ऐसे ही मुरझा गया है, अब आपका लगा लेंगे।
0: हाँ।

0: अरे बहुरिया, तैयार हो गई कि नहीं?
1: जी माँ जी, हो गई।
0: आओ ना बेटा, बाहर आ जाओ, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे। और बबुआ को भी बोल देना कि वो भी आ जाए।
1: माँ जी, वो तो सुबह सुबह ही चले गए हैं।
0: कहाँ चला गया?
1: कुछ बता के नहीं गए हैं।
0: बिना बताए चला गया? इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा। अच्छा ठीक है, छोड़ो, तुम आ जाओ, लेकिन एक बार फोन करके पता कर लेना कि कहाँ है वो।
1: जी।
2: The person you are trying to call is currently busy.
1: माँ जी, उनका फोन तो बिजी बता रहा है।
0: एक बार ही और करके देख लो।
1: जी माँ जी, देखते हैं।
3: हेलो।
4: हेलो।
3: अभी कब तक आएंगे? सुबह से शाम हो गई।
4: शाम हो गई?
3: हाँ जी।
4: अच्छा,
3: हम सुबह से कुछ खाए नहीं है। हम सोच रहे थे कि आप आते तो आपके साथ ही खाते।
4: आ रहे हैं, थोड़ी देर में हम आ रहे हैं।
3: हाँ जल्दी आइए।
4: रखो तुम।
3: जी।
0: बात हुई बबुआ से बहुरिया?
1: हाँ माँ जी।
0: क्या बोला है?
1: अभी कुछ देर में आते हैं।
0: वैसे वो है कहाँ आज?
1: वो अपने दोस्तों के साथ है, थोड़ा सा कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं।
0: अच्छा, तू पार्टी कर रहा है?
1: जी, कह रहे थे कि शादी का पार्टी मांग रहे थे लोग।
0: अच्छा चलो ठीक है, चलो तुम भी खाना खा लो, तुम कुछ खा ही नहीं हो सुबह से।
1: माँ जी आप लोग खा लीजिए, वो आएंगे तो हम उनके साथ खा लेंगे।
0: अरे वो पता नहीं कब तक आएगा, चलो ना खा लो।
1: नहीं नहीं माँ जी, आप लोग खा लीजिए, हम उनके साथ ही खाएंगे।
0: अच्छा चलो ठीक है, एक बार और फोन करके पूछ लेना कि कब तक आ रहा है। ठीक है।
1: ठीक है माँ।

0: नंदनी
1: जी आई। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे
0: सब कोई सो गए ना?
1: हाँ सब लोग सो गए, लेकिन आपको क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, वो कपार हमारा भारी हो रखा है।
1: आपने पी रखी है?
0: नहीं पागल हो, हम कहाँ पीते हैं, हमने नहीं पी रखी है।
1: लेकिन हमको तो महक रहा है।
0: पागल होगा लोका, तुम्हारा नाक खराब होगा फिर।
1: नहीं आपने पी रखी है।
0: चुप रहो, नहीं पिए मैंने।
1: माँ जी को बुला, खाइए मेरी कसम।
0: दोस्तों के साथ इतना होता रहता है। अच्छा हटो तुम सामने से, मेरे लिए चाय बना दो एक कप।
1: हम नहीं बनाएंगे, आप क्यों पी के आए हैं?
2: अरे चुपचाप से चाय बना के लाओ मेरे लिए।
1: चाय नहीं, आप नींबू पानी पीजिए, नशा उतर जाएगा आपका।
2: चुप, जब हमने तुमको बोल रखा है चाय बनाने के लिए तो क्या नींबू पानी लगा रखी हो तुम? जितना बोला जाए उतना ही करो, आगे आगे करने की जरूरत नहीं है तुमको। बीवी हो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहो वो करोगी तुम। चलो जाओ यहाँ से, हम ठीक है ऐसे ही। कौन है?
3: तुम्हारी अम्मा है बबुआ, तनी दरवाजा तो खोलो।
1: आप रुकिए हम खोलते हैं।
3: अरे ये क्या हुआ बहुरिया, तुम रो काहे रही हो?
1: नहीं अम्मा, वो घर की याद आ रही थी थोड़ी सी।
3: अरे बेटा हम लोग है ना, काहे रो रही हो, काहे चिंता कर रही हो? और ये क्या हुआ, तुम्हारा गाल इतना लाल काहे दिख रहा है, ये उंगलियों के निशान क्या हुआ?
1: नहीं अम्मा वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
3: अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो। अच्छा सुनो ना बहू, हम सोच रहे थे कि थोड़ा मेरा बैग वो पैक कर देती तो हम जाके इसके मामा के यहाँ घूम आते।
1: कब जाएंगी माँ?
3: अच्छा कल सुबह हम पारितोष को बोलते हैं कि कल सुबह हमको छोड़ दे।
1: ठीक है अम्मा, तो हम आपका बैग अभी पैक कर देते हैं।
3: ठीक है बहू, ठीक है।
2: अरे ये क्या कर रही हो तुम?
1: वो अम्मा जाने वाली है ना अपने मायके, तो उनका बैग पैक कर रहे थे।
2: अच्छा सुनो तनिक यहाँ आओ।
1: जी कहिए।
2: बैठो। नाराज हो हमसे?
1: नहीं नाराज क्यों होंगे।
2: नहीं वो हम तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिए ना, हमको नहीं करना चाहिए थे। अब वैसे भी हम होश में नहीं थे, इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तुम्हारे आगे देखो हाथ जोड़ते हैं, आगे से कसम खाते हैं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दो।
1: अरे अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, वो हम समझते हैं आप थोड़ा सा नशे में थे तो हो गई होगी गलती।
2: कितनी समझदार हो तुम। अच्छा सुनो कल सुबह हमको जगा देना, हमको काम पे जाना है।
1: जी ठीक है। अरे सुनिए माँ जी तो बोल रही थी कल आप उनको सुबह छोड़ने जाएंगे।
2: अम्मा को छोड़ना है? कहाँ?
1: हाँ उनके मायके।
2: अम्मा ने बताया नहीं? अरे ठीक है, हम अम्मा को छोड़ने के बाद से चले जाएंगे दफ्तर। तो ऐसा करो तुम हमको तनी पहले ही जगा देना।
1: ठीक है हम जगा देंगे।
2: चलो ठीक है।

0: नंदनी
1: जी आ गए।
0: अब तो अम्मा भी नहीं है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं।
1: क्या लाए हैं?
0: वो बनवारी लाल के वहाँ का स्वादिष्ट जलेबी और रबड़ी लाए हैं तुम्हारे लिए।
1: आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अभी बहुत सारा काम है ना, अम्मा जी भी घर पे नहीं है।
0: वही तो, अम्मा जी भी घर पे नहीं है, कहाँ हम लोग को ऐसा टाइम मिलता है। आओ बैठो, तनी बतियाओ हमसे और साथ में खाया जाए। स्वादिष्ट है ना?
1: हाँ बहुत।
0: अच्छा ये बताओ, तुमको शादी वाले दिन काका मिला था?
1: वो हमको बहुत सारा उपहार मिला था और पैसा भी मिला था बहुत सारा, सब रखे हैं संभाल के।
0: आओ ना तनी देखते हैं काका मिला है।
1: अब बाद में देखिएगा ना।
0: हम आओ ना, 2 मिनट तो लगेगा। अब वैसे भी कौन सा इतना काम पड़ा हुआ है, हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे।
1: अच्छा ठीक है चलिए। अब वो जो अलमारी के ऊपर संदूक रखा है ना, उसको नीचे उतारिए।
0: अरे अरे ये काम भी तुम हमसे ही करवाओगी। अच्छा चलो बैठो। बहुत भारी है, लग रहा है भर भर के उपहार मिला है तुमको अम्मा के वहाँ से।
1: हाँ क्योंकि सबसे छोटे हैं ना वहाँ पे, इसलिए।
0: अच्छा ये सबका चाबी वो भी कहाँ रखती हो तुम?
1: सब अलमारी में रखते हैं, बैग में अपने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा सुनो, हमको देर हो रहा है, दफ्तर जाना है हमको।
1: ठीक है आप जाइए।
0: हेलो। हाँ सुरेश, अरे कैसन हो? एकदम में बढ़िया, एकदम में बढ़िया। हाँ का तुम्हारे हो? अरे रे हमारे पास तो पैसा है नहीं अभी। अब तुमको तो पता ही है कि महीने का बीच चल रहा है और बीच में हमको सैलरी मिलता नहीं है, महीने के शुरुआत में मिलता है। अब देखो पार्टी तो हम करा दे पर हमारे पास पैसा उसा नहीं है। अच्छा ना ना, अरे अरे अरे ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है तुम आओ, हम कहीं से व्यवस्था करते हैं। का करे किससे उधार ले हम? किराने वाले भैया? नहीं, उनका तो पहले से बहुत उधार है। ओम प्रकाश चाचा से लेकर शादी में बहुत खर्चा किए हैं। अम्मा भी नहीं है, नंदनी से मांग लेकर नहीं, क्या सोचेगी हमारे बारे में। ऐसा करते हैं कि उसके पर्स से निकाल ले कुछ पैसा, नहीं कहीं देख ले तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दोस्त है, दोस्त को पार्टी ना कराए तो फिर बुरा मान जाएगा। ऐसा करते हैं निकाल लेते हैं, फिर जब मिलेगा तो चुप्पे से रख देंगे। और रखेंगे भी का है, बेबी है, हमारे सुख दुख में काम नहीं आएगी तो फिर किसके सुख दुख में काम आएगी। संदूक की चाबी कहाँ बताया था नंदनी ने? हाँ अलमारी में कहीं देख ना ले, कहाँ नहीं आ रही है।
1: अरे क्या ढूंढ रहे हैं आप?
0: नहीं कुछ
1: ढूंढ रहे हैं तो मैं हेल्प कर देती हूँ।
0: अरे कुछ नहीं, वो बस हम फोन भूल गए थे, हम अपना वही देख रहे थे कहीं इसमें, उस दिन तुम दिखा रही थी तो छूट तो नहीं गया। अच्छा ठीक है तो हम आते हैं बाद में।
1: पता नहीं क्या हो गया इनको,
0: बच गया। पर कोई ना, पैसे तो मिल गए, पार्टी होगा आज रात को। हाँ सुरेश पैसे का व्यवस्था हो गया है, तुम बस आ जाओ। अच्छा नंदनी हम आते हैं थोड़ी देर में।
1: ठीक है जल्दी आइएगा।

0: नंदनी नंदनी नंदनी
1: हाँ आ गए आ गए आ गए। क्या हो गया?
0: दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है तुमको? कहाँ रही तुम?
1: वो कुछ
0: चुप। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से बहाने बनाती हो। आगे से कभी दरवाजा खोलने में देर लगा तो हाथ पैर हम तुम्हारे तोड़ देंगे।
1: ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
0: कैसी बातें कर रहा हूँ मैं? समझ में नहीं आती? दिमाग में नहीं घुस रही मेरी बातें?
1: ये आपको हो क्या गया है?
0: हट यहाँ से। तुम्हारा ढेर मन कर रहा है रोने का, रुलवा दे तुमको और चुपचाप से जाओ खाने लेके आओ हमारा। चुप।
1: खाना लग गया आपका, आके खा लीजिए।
0: क्या बनाया है तुमने खाने में?
1: भिंडी की सब्जी है और चावल बनाया है मैंने।
0: क्या ये बनाया खाने में? तुमको हम बोल के गए थे ना कि आज खाने में कुछ बढ़िया बनाना। ये बढ़िया है? ये भिंडी और ये चावल और दाल ऐसे अक्कल उक्कल बेच रही हो का तुम कहीं? माँ ने खाना ना बनाने को नहीं सिखाया का तुमको? सारा मूड खराब कर दिया।
1: हम क्या करें, घर में पैसे ही नहीं थे और किसी ने संदूक से हमारे सारे पैसे निकाल लिए।
0: अब, अब, अब, अब पैसे निकाल लिए? कैसे निकाल लिए? तुमने कहीं इधर उधर रखे होंगे?
1: नहीं, हम उसी में रखे थे, हम संदूक में ही अपना पैसा रखे थे। और आप जब गए थे तो मैं वापस रूम में आई, मेरे पैसे नहीं थे, सारे गायब हो चुके थे।
0: तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पैसे हम लिए हैं? तूने चोर बोला हमको? तुम चोर बोल रही हो हमको? तुम्हारे सारे पैसे हमने लिए हैं? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा?
1: नहीं, वो
0: तुमको हम अभी बताते हैं। एक तो तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया और उसके बाद से तुम हमको चोर बोल रही हो। तुमको हम सिखाते हैं कि खाना कैसे बनता है। चलो मेरे साथ।
1: नहीं, कहा ले जा रहे
0: हो? चलो चुपचाप।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
0: चलो यहाँ से।
1: मेरे बाल।
0: चुप।
1: नहीं, दर्द हो रहा है मेरे बाल।
0: चलो यहाँ से।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़िए मेरे बाल।
0: तुमको हम बताते हैं।
1: नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप?
0: तुमने जिस जवान से हमको चोर बोला, आज हम उस जवान को ही जला देंगे। और जिन हाथों से तुमने खाना बनाया है, आज इस पे दाग पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ताकि अगले बार से तुम खाना बनाते वक्त ध्यान रखो।
1: छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। मेरे हाथ, मेरे हाथ, ओह छोड़िए प्लीज।
0: चुप।
1: माँ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। मेरे हाथ।
0: मुंह से अगर आवाज निकला तो जान से जाओगी तुम आज।
1: माँ, माँ
0: चुप।
1: माँ कोई बचाओ।

नंदिनी के साथ जो हो रहा था वह हिंसा था, लेकिन इस बात की जानकारी उसे नहीं थी। वो हिंसा सह रही थी। उसके साथ शारीरिक हिंसा तो हो ही रही थी, साथ साथ वो आर्थिक हिंसा की भी शिकार थी। पारुतोष के प्रतिदिन के इस व्यवहार से वो परेशान हुई और अंत में उसने खुद तय किया कि वो पुलिस के पास जाएगी और उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगी। वह पुलिस स्टेशन गई और वहां पर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई।

पुलिस ने बताया कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो हिंसा है। उन्होंने बताया कि किसी को भी थप्पड़ मारना, दांत से काटना, मुक्का या लात से मारना या फिर किसी वस्तु का इस्तेमाल करके शरीर को चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा होती है। और पैसे से जुड़े अधिकार ना देना, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा से जुड़े अधिकार से वंचित रखना, घर के काम जरूरत से ज्यादा करवाना या फिर दहेज की मांग करना, खर्चे का हिसाब चिल्ला कर या मारपीट कर करना आर्थिक हिंसा होती है। इस वजह से आप शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह की हिंसा के शिकार होंगे। उन्होंने बताया कि हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया है जिसके अंतर्गत आप शिकायत करके अपने साथ हो रहे हिंसा को रोक सकती हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आप अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिसके बाद आपको घरेलू हिंसा महिलाओं से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने नंदिनी को इस बात की जानकारी दी कि किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए निजी या सार्वजनिक स्थानों पर वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ हिंसा की शिकायत कर अपने साथ हो रहे हिंसा से बचा जा सकता है। नंदिनी को बस इतना जानने की देरी थी। नंदिनी ने तुरंत अपने साथ हो रहे हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किया और उसे तुरंत प्रोटेक्शन भी मिला। अगर आप भी किसी भी तरह की हिंसा के शिकार हैं या आपके साथ हिंसा हो रही है तो इस बात की जानकारी अपने किसी भी करीबी को जरूर दें। इसके अलावा आप महिला हेल्पलाइन 1090 या 112 पर कॉल कर सकती हैं या महिला एवं बाल विकास अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर सकती हैं। और अगर आपके साथ हुई हिंसा का आपके पास कोई भी सबूत है तो उसे भी साझा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो प्रज्ञा 90.4 मेगाहर्ट्ज़, जन का रेडियो, मन का रेडियो का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
7: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
5: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: ठान लो ये बात,
1: 5 खाद्य समूहों का मेल
2: कर देगा सभी बीमारियों को फेल।
1: जो ना खिलाया बच्चे को पौष्टिक आहार,
2: बच्चा हो सकता है बीमार।
1: शिशु को 2-3 चम्मच मसला हुआ खाना खिलाएं।
2: शारीरिक और मानसिक रूप से अपने बच्चे को स्वस्थ बनाएं।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: प्रस्तुत है संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के जीवन पर आधारित कार्यक्रम न्यूटन की कहानी।
1: बहुत पुरानी बात है, इंग्लैंड के एक शहर में एक बालक रहता था। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा,
2: न्यूटन भैया,
3: भैया
2: हाँ, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो।
3: वो
2: मैं खाना देकर जाती हूँ तो वो भी बड़े बड़े ठंडा हो जाता है। आखिर बात क्या है भैया?
3: कैथरीन, एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था, तभी एक सेब नीचे आ गिरा। मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूँ।
2: वाह भैया, ये भी भला कोई सोचने की बात है। सेब के बाग में सेब तो अक्सर ही नीचे गिरते रहते हैं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि तुम खाना खाना भी भूल जाते हो।
3: कैथरीन, मेरी प्यारी बहना, क्या तुमने कभी सोचा है कि सेब या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है?
2: ये तो हमेशा से ही होता आया है, भला इसमें नया क्या है?
3: सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है, मगर प्रश्न तो नया है ना।
2: हाँ?
3: मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा।
4: सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा?
2: अरे अरे, अब क्या सोचने लगे भैया, पहले खाना खा लो।
3: कैथरीन, खाना रख दो, मैं खा लूंगा।
2: ये तो तुम रोज ही कहते हो, आज मैं यहीं सामने बैठकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तभी जाऊंगी।
3: अच्छा बाबा, लाओ खा लेता हूँ।
2: ये हुई ना बात।
0: ये बालक कोई और नहीं बल्कि महान ब्रिटिश भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ आइजैक न्यूटन था। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को इंग्लैंड के लंकाशायर में वुल्सथोर्प नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली स्थानीय पाठशाला में हुई। 12 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रंथम में ग्रामर स्कूल में विधिवत शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। कुछ वर्ष बाद एक दिन न्यूटन की मां हन्ना उनके स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गईं।
5: सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: आइए आइए मिसेस हन्ना, आइए बैठिए।
5: जी
6: हाँ मिसेस हन्ना, कहिए।
5: सर, मेरा बेटा न्यूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है?
6: देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन एक बहुत ही शांत, सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है।
5: हाँ सर, वो तो वो शुरू से ही है, किंतु वो कुछ पढ़ता लिखता भी है कि नहीं?
6: देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन को नई नई खोजें करने तथा मैकेनिकल काम करने में गजब की महारत हासिल है। एक बार उसने एक पवन चक्की बनाई। क्या आप जानती हैं मिसेस हन्ना कि वो कैसे चलती थी?
5: नहीं, आप बताइए।
6: न्यूटन ने चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया और धागे का दूसरा सिरा पवन चक्की से बांध दिया।
5: अच्छा।
6: अब जब चूहा उछल कूद करता या दौड़ता तो पवन चक्की चलती। और इसी तरह मिसेस हन्ना, एक बार उसने अपने लिए 4 पहियों वाली एक गाड़ी बनाई जो डगमगाते हुए चलती थी। उसे वो अंदर बैठे बैठे ही मोड़ भी सकता था।
5: अच्छा। सर, घर में भी वो अपनी चचेरी बहन और अन्य लड़कियों की गुड़ियों के लिए मेज कुर्सी बनाया करता था। लेकिन सर, अब वो 17 साल का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ काम करे ताकि घर का खर्च चल सके सर, और मैं उसे खेत के काम में या फिर भेड़ पालने के काम में लगाना चाहती हूँ। लेकिन वो न जाने क्या क्या अजीबोगरीब खिलौने बनाता रहता है या फिर उपकरण बनाता रहता है, मैं तो उससे तंग आ गई हूँ।
6: देखिए मिसेस हन्ना, जहाँ तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए।
5: सर लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती।
6: इसकी चिंता आप ना करें, वो एक होनहार विद्यार्थी है।
5: जी।
6: उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूँ।
5: शुक्रिया सर, फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी।
6: जरूर भेजिएगा मिसेस हन्ना।
5: जी।
0: इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूझते न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सन 1661 में वो ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुआ। वहां वो अपना खर्च बाकी अमीर बच्चों के व्यक्तिगत कार्य करके निकालता था। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रेने डिस्कार्टे की पुस्तकों को पढ़ा और तभी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण, पदार्थों की प्रकृति, प्रकाश, रंग, ब्रह्मांड के नियम आदि पर प्रश्न करने शुरू कर दिए।
1: एक दिन न्यूटन सूर्य की ओर एक टक देख रहा था, तभी उसका मित्र विलियम वहां आया।
7: न्यूटन? अरे न्यूटन, तुम एक आंख बंद करके सूर्य की ओर यूं टकटकी लगाए कब से देख रहे हो और क्यों देख रहे हो?
8: विलियम, मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न की जांच कर रहा हूँ, इसीलिए सूर्य की ओर एक टक देख रहा हूँ।
7: लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे?
8: जब तक सभी रंग बदल नहीं जाते।
7: मगर इससे तो तुम्हारी आंख खराब हो सकती है।
8: हाँ वो तो है, किंतु मेरे पास इस प्रश्न की जांच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। मुझे देखने दो।
7: क्या हुआ? क्या हुआ न्यूटन?
8: मुझे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंख के आगे तारे झिलमिला रहे हैं।
7: मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। चलो मैं तुम्हें सहारा देकर अंदर ले चलता हूँ।
8: लेकिन मेरे
7: चलो मेरे साथ तुम। अब तुम्हें कई दिन तक अंधेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा, जब तक कि तुम्हारी आंख पूरी तरह ठीक ना हो जाए।
8: लेकिन विलियम, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज कर ही रहूंगा।
7: खोज लेना उत्तर, लेकिन फिलहाल तो आराम करो।

0: सन 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली। और 10 अक्टूबर सन 1665 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया गया। न्यूटन को अपने घर लौटना पड़ा। परंतु विश्वविद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वरदान साबित हुआ।
1: अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर पूरा समय अपने शोध कार्य पर लगा सकता था। सन 1666 न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इसी साल न्यूटन ने आधुनिक कैलकुलस पर 3 शोध पत्र प्रस्तुत किए।
2: न्यूटन,
3: अरे विलियम,
2: अरे न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इन शोध पत्रों की पूरे यूरोप में धूम मची हुई है और 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही तुम यूरोप के प्रमुख गणितज्ञ बन गए हो। अच्छा न्यूटन, क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन केपलर की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं?
3: हाँ विलियम, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस धरती पर गिरने की बात कही है और जॉन केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या तुम जानते हो मित्र, एक बार बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था?
2: भला मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। अच्छा बताओ क्या हुआ था।
3: मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा।
2: फिर
3: मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि ये सेब पेड़ से सीधा धरती की ओर ही क्यों गिरा, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया। तब से ये प्रश्न मुझे लगातार परेशान करता रहा। लेकिन विलियम, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है।
2: क्या समझ में आ रहा है?
3: यही कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है वो ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है। और उसे हवा में इधर उधर या ऊपर नहीं जाने देता।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: हाँ यही है इस प्रश्न का उत्तर।
0: इसी प्रकार चिंतन, मनन, अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रयोग करते करते न्यूटन ने गति के 3 नियम और उन पर आधारित गुरुत्वाकर्षण का नियम बना लिया। न्यूटन द्वारा बताए गए गति के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे।
1: दूसरा नियम है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन उस बल की मात्रा के अनुरूप होता है।
0: और तीसरा नियम है, कोई भी वस्तु अपने पर होने वाली क्रिया के विरुद्ध उतनी ही प्रतिक्रिया करती है।
1: गुरुत्वाकर्षण है क्या? गुरुत्वाकर्षण के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रेविटेशन, जो प्राचीन लैटिन शब्द ग्रेविटास से बना है। ग्रेविटास का अर्थ है भारीपन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है और जिस बल से खींचता है वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है।
0: न्यूटन ने सन 1668 में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई। इस दूरबीन की प्रसिद्धि तथा उपयोगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया। इस खोज के बाद दूरबीन का आकार घटकर केवल 6 इंच लंबा तथा 1 इंच व्यास का रह गया। इतना ही नहीं, ये छोटी दूरबीन पिछली दूरबीन की तुलना में 30 गुना बेहतर थी। बृहस्पति, शनि आदि दूर स्थित ग्रहों को देखने में ये दूरबीन विशेष रूप से सहायक थी।
1: अक्टूबर सन 1669 में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। सन 1696 में वे लंदन मिंट के वार्डन तथा सन 1699 में वहां के मास्टर बन गए। सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, जिस पर वे मृत्यु पर्यंत रहे। सन 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि से सम्मानित होने वाले न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे। मार्च सन 1727 को ये महान वैज्ञानिक इस संसार से विदा हो गया।
0: न्यूटन ने कई पुस्तकें लिखी। अपनी पहली पुस्तक कुछ दार्शनिक प्रश्न के आरंभ में वे कहते हैं,
3: प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे प्यारा मित्र है सत्य।
1: न्यूटन की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है सन 1687 में प्रकाशित उनकी अद्भुत पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसे संक्षेप में प्रिंसिपिया भी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के इतिहास में ये पुस्तक मील का पत्थर मानी जाती है।
0: सन 1704 में न्यूटन की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ऑप्टिक्स प्रकाशित हुई। ऑप्टिक्स में न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
1: न्यूटन के समय तक रंगों के बारे में अजीबोगरीब तथा अलग अलग धारणाएं थीं, जैसे कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है। परंतु न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफेद रोशनी अलग अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल छितरा भर देता है, यानी अलग अलग रंगों को दिखा देता है।
0: विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता। उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे।

न्यूटन की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर रवि शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, प्रवीण शर्मा, राजेश आहूजा, नीतू झांझी, अशोक शर्मा, आकाश और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीवी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है

0: आप बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे? जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान।

0: इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक बड़ी जीत।
1: बच्चों की छुट्टियां हैं। तनु अपने नाना जी के पास आई हुई है। नाना जी के साथ रोज सैर सपाटा मौज मस्ती का दौर चलता है। नाना जी शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, अब रिटायर हो चुके हैं और घर पर ही सुबह शाम मरीज देखते हैं। इस समय तनु जीवन काका और नाना जी के साथ बाजार जा रही है।
2: नाना जी।
3: हाँ बेटा।
2: हम सैर करने जा रहे हैं या सामान लेने?
3: क्यों जीवन?
4: भाई मैं तो सब्जी लेकर वापस चला जाऊंगा।
2: सब्जी लेकर?
3: बेटा तुम्हारी नानी ने सब्जी लाने को कहा है। उनका कहना है उनकी नक चढ़ी नातिन के लिए एकदम हरी हरी ताजी सब्जियां लाई जाए।
2: तुम्हें नक चढ़ी हूँ?
3: बेटा ये मैंने नहीं कहा, तुम्हारी नानी ने कहा है।
2: झूठ, नानी मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकती। आपने उनकी बात में जरूर नमक मिर्च लगाया है।
4: अरे बेटा सब्जी में मसाले तो डालने ही पड़ते हैं।
3: बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीवन।
2: अच्छा तो फिर सीधे चलते हैं खेत में, वहीं से लेकर आएंगे ताजी सब्जियाँ।

0: चलो।
1: लेकिन बेटा जरा ठहरो तो।
2: अरे अरे इधर देखो, इस बूढ़े आदमी के पैर में तो चोट है।
1: अरे जीवन, तुम जरा घर से मेरा सामान का बैग लेकर के आओ। तनु बेटा जरा इधर आओ, तुम मेरी मदद करो।
3: अच्छा बाबूजी, मैं अभी लेकर आया।
1: ठहर ठहर, इधर करो, आगे करो पैर। हाँ दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
4: सामने फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पैर पर एक घाव था और उस पर पट्टी नहीं बंधी थी। तभी थोड़ी ही देर में जीवन काका नाना जी का दवा पट्टी का बैग लेकर आया।
2: ये लीजिए।
1: लाओ लाओ मुझे दो।
2: ठीक है,
1: तनु जरा इसमें से रुई निकालो। ये हाँ ये ठीक है। अरे जरा पैर आगे को करो। हाँ नहीं नहीं, देखो देखो अभी दो दिन में ठीक हो जाएगा। चलो साफ कर लें तो मुझे। हाँ तनु पकड़ना जरा इधर से। अब दो एक दिन में ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं।
5: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है।
2: उधर चलो।
4: डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े आदमी का घाव साफ किया, फिर दवा लगाकर पट्टी बांध दी और कहा अगले दिन घर पर आकर पट्टी बदलवा लें। फिर सैर के बाद जब तनु और नाना जी दोनों घर पहुंचे तो तनु ने कहा,
6: नाना जी
1: बेटा
6: आपने बहुत अच्छा किया कि उस आदमी के पट्टी बांध दी, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता था।
1: हाँ बेटा, इन्फेक्शन यानी संक्रमण तो हो ही सकता है
6: जी।
1: इसलिए बेटा घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए बेटा, इससे बैक्टीरिया जैसे रोगाणु शरीर में जाकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इससे मुझे याद आ रही है एक कहानी।
6: अरे वाह, एक और मजेदार कहानी।
1: हाँ आज तुम्हें एक खास कहानी सुनाएंगे हम।
6: मेरे दोनों कान खुले हुए हैं, तो शुरू कीजिए नाना जी।
1: तो सुनो, बात अगस्त सन 1865 की है
6: जी,
1: और देश पता है कौन सा था? स्कॉटलैंड। हाँ, स्कॉटलैंड में ग्लासगो विश्वविद्यालय
6: जी,
1: ठीक है
6: जी,
1: शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लिस्टर कमरे में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। पिछले कुछ वर्षों में सर्जरी के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन देखे थे डॉक्टर लिस्टर ने।
6: अच्छा।
1: लेकिन सफल ऑपरेशन के बाद भी कई बार रोगी की स्थिति बिगड़ जाती थी। घाव सूज कर लाल हो जाता था,
6: फिर
1: उसमें मवाद पड़ जाता।
6: अच्छा।
1: और इन्फेक्शन फैलने से कई रोगियों की मृत्यु तक हो जाती थी। तो डॉक्टर लिस्टर इस स्थिति से परेशान थे।
6: अच्छा।
1: वो जानना चाहते थे कि रोगी के घाव में मवाद क्यों पड़ जाता है।
6: अच्छा।
1: हाँ, इतना वो जान गए थे कि घाव में मवाद पड़ने और रोगी के शरीर में इन्फेक्शन का जहर फैलने के बीच एक गहरा संबंध है।
6: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और इन्हीं दिनों उन्होंने लुई पाश्चर का एक लेख पढ़ा।
6: क्या लेख था वो नाना जी?
1: उसमें था वो फ्रांस में ना अंगूर के रस से शराब बनाई जाती थी।
6: अच्छा।
1: और कभी कभी अंगूर के रस में सड़न पैदा हो जाती थी। लुई पाश्चर ने खोज से पता लगाया कि सड़न के कारण थे बैक्टीरिया जो हवा के द्वारा अंगूर के रस में पहुंच जाती थी। तो ये लेख पढ़कर डॉक्टर लिस्टर चौंक पड़े। हाँ, उन्हें लगा अगर जीवाणु अंगूर के रस में जाकर सड़न पैदा कर सकते हैं तो ये ऐसा खुले घाव के अंदर जाकर भी कर सकते हैं।
6: हाँ।
1: उन्हें पक्का विश्वास हो गया। कि मवाद पड़ने या इन्फेक्शन के पीछे यही कारण था।
6: अच्छा अच्छा।
1: हाँ बेटा।
6: फिर उन्होंने क्या किया?
1: तो फिर डॉक्टर लिस्टर ने सुना कि गंदी नालियों की दुर्गंध मिटाने के लिए फिनाइल का छिड़काव किया जाता है।
6: ओ।
1: किया जाता है ना, अब भी किया जाता है
6: जी।
1: हाँ, तो बस उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में फिनाइल का छिड़काव शुरू करा दिया। साथ ही मरीज के घाव की सफाई और पट्टियां उबालने पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।
6: तो उस समय क्या सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था?
1: हाँ बेटा, पुराने समय में सर्जन यानी शल्य चिकित्सक कपड़ों तथा हाथों को साफ किए बिना ही ऑपरेशन करते रहते थे।
6: अच्छा।
1: हाँ, साथ ही घाव पर पट्टियां बांधने के लिए पुराने फटे कपड़ों का उपयोग किया करते थे।
6: छी, पुराने कपड़े?
1: हाँ, और तो और ऑपरेशन के औजार भी यूं ही खुले पड़े रहते थे।
6: अच्छा।
1: हाँ, दरअसल तब गंदगी से इन्फेक्शन फैलने की बात लोगों को पता ही नहीं थी।
6: अच्छा, तो ये बात थी।
1: हाँ बेटा। और जब से डॉक्टर लिस्टर ने ऑपरेशन थिएटर में सफाई के नए व कड़े नियम लागू किए, तब से सर्जन साफ कपड़ों में और हाथ साफ करके ऑपरेशन करने लगे। हाँ, इसी तरह मरीज के पास लोगों के बार बार आने जाने पर भी रोक लगा दी गई।
6: अरे वाह।
1: हाँ,
6: तब तो डॉक्टर लिस्टर का नाम मशहूर हो गया होगा ना।
1: हाँ बेटा, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने उनका विरोध भी किया। लेकिन डॉक्टर लिस्टर के अस्पताल में जब इन्फेक्शन से होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आ गई, तब सब जगह डॉक्टर लिस्टर की इस बात को मान्यता मिल गई।
6: किस बात को?
1: इस बात को कि खुले घाव पर हमला करके रोगाणु ही इन्फेक्शन फैलाते हैं। हाँ, जो कि गंदगी के कारण पैदा होते हैं बेटा।
6: अच्छा।
1: तब लोगों ने सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ?
6: तभी अस्पतालों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: हाँ हाँ बेटा। हाँ, वैसे स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता गया। बैक्टीरिया से लड़ने के लिए नई नई दवाइयों की खोज भी होती रही।
6: तो इस परिवर्तन का श्रेय डॉक्टर लिस्टर को जाता है।
1: हाँ भाई, पहला कदम तो उन्होंने ही उठाया था।
6: तभी आपने उस घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी थी।
1: तन्नु बिटिया जी, मुझे लगता है कि आप मुझसे भी बड़ी डॉक्टर बनेगी। हाँ,
6: आपसे भी बड़ी। सफेद बाल, चश्मा लगाए।
1: अच्छा बाबा, तुम बच्चा डॉक्टर बन जाना।
6: ये ठीक है।
4: हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई, इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है।
0: एक बड़ी जीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख देवेंद्र कुमार, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीतू झांजी, जयमिनी कुमार, सतीश कक्कड़ और मिताली, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। धरती मेरी।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी फुटबॉल और जीवन।

0: मानव मानव, अरे ये यूनिफॉर्म नहीं उतारा अभी तक, क्या बात है आज बिल्कुल चुपचाप बैठा है। स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या?
1: नहीं नहीं मम्मी, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। असल में अगले शनिवार मानव की टीम का दूसरे स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल मैच है, बस इसी को लेकर परेशान है।
2: अरे मानव, खेलने में परेशानी की क्या बात है?
1: असल में विवेक भैया, मानव की टीम हर बार हार जाती है, पर पता नहीं क्यों मानव ने इस बार दूसरी टीम के कप्तान पिंटू से ये कह दिया कि इस बार मानव की टीम ही जीतेगी और अगर नहीं जीतेगी तो मानव कभी फुटबॉल नहीं खेलेगा।
3: मानव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो बड़ी गलत बात है। पहली बात तो बेटा, खेल में शर्त नहीं लगाते, और दूसरी बात, अगर शर्त लगा ही ली तो फिर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और जीतो।
0: हाँ, ऐसे मुंह लटकाने से जीत थोड़े ना मिल जाती है मानव।
2: अब जल्दी कर, कपड़े बदल और मैदान जाकर प्रैक्टिस कर, चलो खड़ा हो।
4: पर भैया, पिंटू की टीम बहुत तगड़ी है, हम उसे नहीं हरा सकते।
2: मानव, ये तो तुझे उसे चुनौती देते वक्त सोचना चाहिए था, और वैसे भी फुटबॉल एक टीम का खेल है। अगर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सही तालमेल से खेलें तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं।
1: और अब जा, तैयार होकर अपनी टीम इकट्ठी कर और प्रैक्टिस शुरू कर, अब जाना।
2: जा, चल चल।
4: नहीं दीदी, पिंटू की टीम के सब खिलाड़ी अच्छे हैं, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें उनसे नहीं जीत सकते।
0: ओहो।
1: लो भाई, अपने मानव ने तो खेलने से पहले ही हार मान ली।
3: कौन आ गया? अब लगता है डॉक्टर इस्लाम, ब्रिज मोहन और डॉक्टर अल्पना जी आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं।
5: बहुत अच्छा रहा भाई साहब। आज असल में महासागरों, सागरों, वर्षादी का पोषक तत्वों के वितरण में भूमिका पर चर्चा थी।
6: हाँ सूर्य प्रकाश, काफी अच्छी चर्चा रही।
0: लीजिए भाई साहब, पानी पीजिए।
5: थैंक यू भाभी।
7: अरे ये मानव का मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है मानव, डांट पड़ी है क्या?
1: नहीं अल्पना आंटी, असल में मानव ने एक तगड़ी टीम से फुटबॉल खेलने और जीतने की शर्त रख ली है।
2: हाँ आंटी, और अब प्रैक्टिस करके उन्हें टक्कर देने की बजाय पहले से ही हार मान कर बैठा है।
7: क्या मानव, ऐसे हार मान कर कैसे काम चलेगा? अच्छा ये बताओ, कब है मैच?
4: अगले शनिवार को।
5: अरे भाई मानव, अगले शनिवार में तो पूरा एक हफ्ता है, तुम अभी से हार मानकर बैठ गए? हाँ
6: और क्या, अब ऐसे ही सारे महासागर, तेज बहती हवाएं, वायुमंडल हार मानकर बैठ जाएं तो चल गया जीवन।
4: क्या इस्लाम अंकल, कहाँ फुटबॉल का खेल और कहाँ महासागर वायुमंडल की बातें।
6: अरे वाह, क्या अलग है दोनों में? दोनों ही यानी महासागर वायुमंडल फुटबॉल की टीम के खिलाड़ियों की तरह एक दूसरे के सहयोग से ही तो चलते हैं।
5: हाँ भाई, इस आपसी समन्वय से फुटबॉल में तुम मैच जीतते हो, और महासागर वायुमंडल के आपसी समन्वय से जीतता है जीवन।
7: और जीवन तो निरंतर जीतता चला आ रहा है, क्योंकि महासागर और वायुमंडल अपने तालमेल को बिगड़ने ही नहीं देते।
1: वो कैसे अल्पना आंटी?
5: भाई वो डॉक्टर इस्लाम बता रहे थे कि पिछले बार आप सबसे जो बातें हुई थी उसमें उन्होंने एक बूंद के पूरे सफर को बताया था।
7: कैसे ये बूंद मानव की पसंदीदा भिंडी बन गई थी।
1: पसंदीदा।
6: देखो भाई मानव, जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि सूरज से सिर्फ ऊर्जा हमें मिलती है, इसी ऊर्जा से ही महासागरों व वायुमंडल में गतिविधियां होती हैं, और फिर वायुमंडल अपनी गति लेता है,
7: और इन सब गतिविधियों की वजह से मौसम बनते हैं, पोषक तत्वों का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा अपना रूप बदलती है और जीवन सांसें लेता है।
5: देखो मानव, समुद्री पानी में समुद्री जीवों के लिए ऐसे पदार्थ होते हैं जो समुद्री जीवों के पोषण और शंख आदि की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं।
7: हाँ भाई, सागर के पानी में सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आदि के यौगिक होते हैं, जिनके साथ बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनियम, लौह और मैग्नीज भी सतही जल में मौजूद होते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अल्पना, ये सब एक मित्रण के रूप में सागरों की ऊपरी सतह के जल में होते हैं।
3: हाँ।
6: जहाँ सूरज की रोशनी काफी मात्रा में होती है, इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है।
2: अच्छा।
6: हाँ, इस प्रक्रिया में खनिज लवण जैविक पदार्थ में बदल जाते हैं और जीवन को आधार मिलता है।
4: अंकल इतना तो मैं जानता ही हूँ, पर इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
3: अरे मानव, जीतोगे जीतोगे, पहले पूरी बात तो सुन लो। भाई ये खाद्य श्रृंखला सतही जल पर तो चलती रहती है, परंतु बहुत सारा जैविक पदार्थ जीवों के मरने के बाद सागरों के तल में समा जाता है।
5: वाह वाह वाह, सुन रहे पका।
3: मैं दोस्त किसका हूँ तुम्हारा ही ना।
1: फिर ये पोषक तत्व समुद्र की ऊपरी सतह पर रहने वाले जीवों को कैसे मिलते हैं?
6: सृष्टि बेटा, यही तो आपसी समन्वय है। जीवाणुओं की क्रिया द्वारा ये पोषक तत्व सागरों की अतल गहराइयों में आयनी रूप में बदल जाते हैं, और सूरज की ऊर्जा के इंजन से चलने वाला महासागरीय चक्रण इन पोषक तत्वों को वापस सतही जल में पहुंचा देता है, जहां फिर जीवन खिलने लगता है।
4: पर ये पानी ऊपर नीचे होता कैसे है?
1: अरे वाह, मानव को तो रोचक लगने लगा ये सब। लीजिए भाई साहब चाय पीजिए, और ये लीजिए पैटीज।
3: लो भाई, वसुधा भी पोषक तत्व लेकर आ गई है। थैंक यू वसुधा। लीजिए लीजिए लीजिए, आप लीजिए ना, विश्राम
6: ले रहा हूँ।
7: हाँ भाई, तो मानव जानना चाह रहा था कि ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर कैसे जाता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
7: तो भाई ये सब घनत्व के उतार चढ़ाव के कारण होता है।
1: हाँ। यानी पानी का खारापन।
2: हाँ।
1: है ना?
2: और ये खारा इसलिए होता है क्योंकि नदियां अपने साथ मिट्टी आदि को बहा कर लाती हैं, उनमें लवण होते हैं, और महासागरों में फटने वाले ज्वालामुखी आदि से लवण समुद्र के पानी में घुल जाते हैं।
5: वाह वाह वाह विवेक भाई, तुम्हें तो बहुत जानकारी है।
2: थैंक यू अंकल।
5: शाबाश शाबाश।
4: पर विवेक भैया, नमक से महासागरों के पानी के ऊपर नीचे होने का क्या संबंध है?
6: अरे भाई, सारा आपसी समन्वय है, हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। जैसे फुटबॉल में फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे ऊर्जा की भी भूमिका और नमक की भी है।
4: वो कैसे
7: भाई? महासागरों में पानी का घनत्व लवणता और तापमान की भिन्नता से प्रभावित होता है। ठंडा और खारा पानी ही सबसे सघन होता है, तो ये ठंडा नमकीन पानी समुद्र तल की ओर नीचे बैठ जाता है। जबकि गर्म कम नमकीन पानी, जिसकी सघनता कम होती है, वो महासागरों की सतह पर बना रहता है।
5: अच्छा, तो इस तरह अलग अलग महासागर की परतों पर सघनता की भिन्नता रहती है, तब जाकर बनते हैं सागर की गहराइयों में प्रवाह। जब ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडा नमकीन भारी पानी तल की ओर बैठता है तो ये प्रवाह बनता है।
7: महासागरों के तल पर होता हुआ ये पानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा के गर्म पानी की ओर चल देता है।
2: अच्छा,
7: भूमध्य रेखा पर हवाएं अपनी भूमिका निभाती हैं, और ये निरंतर चलती हवाएं भूमध्य रेखा के गर्म सतही पानी को ध्रुवों की ओर ढकेलती हैं, और सागर के तल से ठंडा पानी सतह की ओर ऊपर उठता है।
5: फिर ये पानी गर्म होकर ध्रुव की ओर बढ़ जाता है। हवाएं इस सतही पानी को धकेलती हुई ध्रुवों पर पहुंचाती हैं, और फिर यह पोषक तत्वों से भरपूर सतही जल कई प्रकार के जीवों के काम आता है, और फिर पूरा चक्र दोबारा चलता है।
1: कमाल है।
7: हाँ सृष्टि, ये सब प्रकृति के आश्चर्यजनक कर्म हैं, जिन्हें जितना समझो उतना ही अचरज होता है।
6: असल में सृष्टि बेटे, ये सारी गतिविधियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि सूरज हमारे ग्रह को एक जैसा गर्म नहीं करता। जहाँ एक ओर भूमध्य रेखा पर सूरज की सबसे अधिक ऊष्मा महसूस होती है, वहीं दोनों ध्रुवों पर सूरज की ऊर्जा सबसे कम होती है।
5: अब जैसे सघनता और तापमान की भिन्नता के कारण महासागर के अलग अलग परतों में गतिविधियां होती हैं, ऐसे पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल की कई परस्पर गतिविधियां होती रहती हैं।
7: पानी हवाओं आदि सभी का एक निश्चित चक्र होता है, जो तापमान और सघनता के द्वारा तय होता है।
2: इस्लाम अंकल,
6: बोलो विवेक।
2: आपने पिछली बार बताया था कि महासागर ऊपर से नीचे की ओर गर्म होते हैं और वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ठीक?
6: हाँ विवेक, बिल्कुल।
2: तो अंकल, इससे फर्क क्या पड़ता है?
6: देखो विवेक, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि सघनता और तापमान के फर्क से एक चक्र बनता है।
2: अच्छा,
6: असल में इन्हीं कारणों से कम दबाव या अधिक दबाव के क्षेत्र बनते हैं। इस सघनता की भिन्नता में समानता लाने के लिए ये चक्र चलते रहते हैं। जब वायुमंडल में ये गतिविधियां होती हैं, तो विभिन्न प्रकार के मौसम बनते हैं।
7: तो बच्चों, ये महासागरों की सतह पर बहने वाली हवाएं लहरें तो पैदा करती ही हैं, साथ ही साथ सतही पानी से ऊष्मा लेकर उस पानी को ठंडा करती हैं और खुद ऊपर की ओर उठ जाती हैं।
1: हाँ हाँ आंटी, ये तो हम जानते हैं।
4: हाँ, पर मैं फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
0: मानव तो अभी तक फुटबॉल में अटका हुआ है। क्या मानव?
1: क्या
5: अच्छा तो है भाभी, इतनी गंभीर बातों में भी मानव अपना लक्ष्य फुटबॉल नहीं भूला। बस मानव, महासागर और वायुमंडल का आपसी संबंध समझ लो तो फिर तुम्हारी जीत पक्की समझो।
4: कैसे अंकल?
6: अरे भाई, इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर करीब 72% में महासागर है जो धरती पर ऊष्मा के सबसे बड़े भंडार है।
7: पता है मानव, धरती के सारे महासागरों के ऊपरी 10 फीट में इतनी ऊष्मा समाई है जितनी के पूरे वायुमंडल में।
3: अच्छा? हाँ, और इससे आश्चर्यजनक बात ये है कि हर छोटे बड़े चक्र और प्रवाह के द्वारा महासागर इस ऊष्मा का हस्तांतरण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं।
6: सूर्य प्रकाश, मैं एक उदाहरण देता
3: हूँ। हाँ जरूर जरूर जरूर,
6: आप तो वाह वाह ही बोले जा रहे, कितनी
8: कितनी जानकारी।
3: अरे हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
6: अच्छा तो मैं उदाहरण की बात कर रहा था।
3: हाँ, बताओ।
6: तो पार अटलांटिक खाड़ी प्रवाह में भूमध्य रेखा से आया गर्म पानी करीब 4.5 अरब घन फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है।
3: हाँ।
6: यानी उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए प्रति घंटा इतनी ऊर्जा लगा देता है जितनी 5 अरब टन कोयला जलाने से पैदा होती है।
1: बाप रे, इतनी ऊर्जा।
7: हाँ सृष्टि। अच्छा सृष्टि, कभी तुमने सोचा है कि समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में या फिर बड़ी झील के आसपास के क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी इलाकों के तराई क्षेत्रों में निरंतर हवाएं क्यों चलती हैं?
2: आंटी, ऐसा दबाव की भिन्नता के कारण होता होगा।
5: अरे वाह विवेक, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आमतौर पर ऐसा इसलिए ही होता है, परंतु सामान्यतः तेज हवाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। परंतु कुछ हवाएं बिल्कुल ऐसे नियमित रूप से चलती हैं जैसे सूरज का उदय और अस्त।
1: अच्छा, वो कैसे अंकल?
6: असल में बेटा, जैसा डॉक्टर अल्पना ने बताया कि महासागरों के किनारों पर या बड़ी झील आदि के किनारों पर निरंतर हवाएं चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में सूरज भूमि को सागर की तुलना में तेजी से गर्म करता है। इस कारण भूमि की गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह समुद्र या बड़ी झील से आने वाली ठंडी हवा ले लेती है।
7: और रात को ठीक उल्टा होता है, जमीन पानी की तुलना में ठंडी होती है, इसलिए रात को किनारों से ठंडी हवाएं पानी की ओर चलती हैं। इस तरह ये कुछ ऐसे छोटे छोटे चक्रों का उदाहरण है जो बहुत ही सीमित इलाकों में निरंतर क्रिया करते रहते हैं।
1: और तराई के इलाकों में क्या होता है?
6: सृष्टि बेटे, तराई के इलाकों में जब सूरज निकला होता है तो पहाड़ों की अगल बगल की और ऊपरी हवाएं गर्म हो जाती हैं, जिससे गर्म हल्की हवाएं ऊपर उठती हैं और तराई से बाहर की ओर निकलती हैं। इसे एक ऐसा चक्र बनता है जो दिन भर चलता रहता है, यानी ठंडी बयार बहती रहती है।
7: हाँ। और रात को जब पहाड़ों की ऊपरी और अगल बगल वाली हवाएं ठंडी हो जाती हैं, तो ये सघन हवाएं तराई में नीचे की ओर आती हैं, जिस कारण पहाड़ों से आने वाली हवाएं रात भर चलती रहती हैं।
3: बिल्कुल ठीक।
1: पर ये तो बहुत कम इलाकों में होता है, पूरी धरती पर महासागरों और वायुमंडल का चक्र कैसे चलता है?
5: देखो बच्चों,

0: तुम्हें भूमध्य रेखा के ध्रुवीय क्षेत्रों का सफर तो हमने कुछ कुछ बता दिया,
1: हाँ, जी।
0: वायुमंडल के चक्र को फिर आगे चलकर बताएंगे। अभी तुम्हें महासागरों के विभिन्न चक्र, प्रवाह आदि थोड़ा थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है?
2: पर अंकल, इससे फुटबॉल मैच कैसे जीतूंगा?
3: हो मानव,
4: ओ मानव, इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हो तुम। अरे सतही प्रवाह, जलवायु नियंत्रण, अंतरजलीय प्रवाह, वाष्पन, वर्षा, नमी, दबाव आदि सभी इतनी सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें सब एक आपसी सहयोग और समन्वय नहीं बना सकते। समझ गए ना? समझ गए ना
2: अंकल? अब कुछ कुछ समझ आ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
5: चलो मानव को कुछ समझ तो आया।
3: तो अंकल, मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि महासागर धरती के मौसम को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वो भूमि को गर्म और ठंडा करते हैं, हवा को नमी देते हैं और शुष्क भी करते हैं, और हवा की गति एवं दिशा को भी नियंत्रित करते हैं, है ना?
4: वाह वाह सृष्टि बेटे, वाह, इतना सरल तो हम भी नहीं कह पाते। शाबाश बेटा।
5: मैं कह लूं कि जैसा पिता वैसी पुत्री।
4: प्रकाश जी तो कमाल की बात बोलते हैं।
6: सृष्टि बेटा, इसके अलावा महासागरों का जल वाष्पित होकर बादल बनाता है, जो संघनित होकर वर्षा के रूप में बरसते हैं।
0: गर्म जल की धारा शीत ऋतु को थोड़ा कम तकलीफ दे बनाती है, तो गर्मियों में ठंडी धारा थोड़ा सुकून पहुंचाती है।
4: हाँ भाई, ये तो कुछ उदाहरण है जिनके द्वारा हम कह सकते हैं महासागर हमारी धरती की जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं।
6: हमारी जलवायु प्रणाली के अंतर्गत ये महासागर ताप के इंजन के रूप में कार्य करते हैं।
2: वो कैसे?
3: अरे मानव, फुटबॉल करता रहेगा तो ये सब समझ कहाँ से आएगा?
1: हाँ।
3: ये बताया तो था कि भूमि और बर्फ की सतह की तुलना में महासागर ज्यादा ऊष्मा सोखते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ये महासागर भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा सोखते हैं और उसे विभिन्न प्रवाहों के रूप में ध्रुवों तक ले जाते हैं,
3: और इसीलिए महासागरों को ऊष्मा का भंडार कहते हैं। समझा मानव?
2: हाँ दीदी।
4: महासागरीय प्रवाह कई सारे हैं। ये प्रवाह पूरे महासागरों में बड़े बड़े महापाश यानी लूप के रूप में घूमते रहते हैं। इन्हें गायर यानी वृत्ताकार गति कहते हैं। और जो ये
2: बस अंकल, आज के लिए इतना ही काफी है। आप गायर महासागरीय प्रवाह के बारे में अगली बार बता देना।
5: क्या बेचारा,
2: मुझे अभी फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए भी तो जाना है।
4: शाबाश, ये हुई ना बात। भाई हम तुम्हें महासागर वायुमंडल सब बताएंगे जरूर, पर तुम फुटबॉल की प्रैक्टिस पूरी मेहनत से करो और जीतो।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारी फुटबॉल टीम का कप्तान सूरज की तरह होना चाहिए, जो पूरी टीम को ऊर्जा दे, समझे?
2: हाँ अंकल।
1: हाँ मानव, तुम्हारे फॉरवर्ड बिल्कुल महासागरीय और वायुमंडल के चक्र और प्रवाह की तरह होने चाहिए, जो कभी इधर तो कभी उधर होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, समझे?
6: और वो लक्ष्य है गोल।
2: हाँ आंटी, अब तो गोल ही जीवन है, मैं चला।
5: भाई वाह, मानव आज कर्म की अहमियत समझ गया, फल की चिंता में बेकार ही घुला जा रहा था।
6: भाई साहब, ब्रज जी, अल्पना जी, आप लोगों ने इस धरती से जुड़ी बातों को मानव की फुटबॉल से इतना बढ़िया जोड़ा कि किसी को भी जोश आ जाए।
4: हाँ बिल्कुल। अरे भाभी, पूरा जीवन ही एक नाजुक संतुलन और आपसी समन्वय पर टिका, जो इसे समझ ले वो सिर्फ जीता है।
5: बिल्कुल सही।
2: भैया सृष्टि, पापा, मैं जीत गया। मम्मी पता है हमने आज 5 गोल किए, और पिंटू है इसकी टीम में तो बस 2 गोल किए, और पता है मैंने 3 गोल किए।
5: शाबाश मानव, शाबाश। देखा, अपने पर भरोसा करने का फायदा देखा?
2: नहीं पापा, असल में हम सब एक पूरी टीम, एक पूरी यूनिट के रूप में खेले और इसीलिए जीते।
3: शाबाश। देखा, तुम सूर्य, महासागर और वायुमंडल के आपसी समन्वय की तरह खेले और जीते।
1: और सृष्टि की इसी बात पर पूरी टीम को मेरी तरफ से आइसक्रीम।
7: हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां व विभिन्न जीव जंतु यहां जीवन के विविध रूपों में समन्वय बनाए हुए हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवन का हर एक रूप या कहें कि जीवों की एक प्रजाति अपने अस्तित्व के लिए दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूपों की जब हम बात करते हैं तो हम मानव प्रजाति की भी बात करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को समझना और उसे सुरक्षित बनाए रखना चाहें तो हमें पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर निर्भरता और जीवन के लिए हवा, पानी व मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन लाखों करोड़ों वर्षों के दौरान पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पनपा है। जीवों की वे प्रजातियां पृथ्वी पर रही है जिन्होंने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ऐसे परिवर्तन भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात और इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हुए होंगे। अक्सर ये परिवर्तन उन प्रजातियों द्वारा लाए गए थे जो विकास की सीढ़ी पर ऊंचे पायदान पर बैठी हैं। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं और विकास के लिए पर्यावरण पर नियंत्रण करने की कोशिश की और यही मानव प्रजाति ने अपने नाजुक संतुलन पर टिके पृथ्वी ग्रह पर भी किया। हमें विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति हम सदियों से परंपरागत स्वरूप से जलावन लकड़ी, कोयला व पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त करते आ रहे हैं। आज इस बात को सभी मानते हैं कि कोयले के दहन जैसी मानवीय गतिविधियों से ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ने लगा है और पृथ्वी दिनों दिन गर्माती जा रही है। आज हमारे ग्रह पर कई खतरे मंडरा रहे हैं जो मुख्यतः बदलती जलवायु, बिगड़ता पर्यावरण, प्रजातियों का तेजी से सफाया होना, शुद्ध जल की घटती उपलब्धता, नदियों का समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाना, बंजर होती उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोतों की बिगड़ती हालत, बढ़ती बीमारियां, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसका पेट भरना, ये सब समस्याएं हैं। इन सब की वजह से आज मानव का अस्तित्व ही खतरे में आ पड़ा है। आज हम चादर से अधिक पैर पसार रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अधिक की आवश्यकता है। मानवीय आवश्यकताओं की मांग पृथ्वी की क्षमता से परे है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक प्राकृतिक साधनों का दोहन कर रहे हैं और जिससे आज विकासशील देशों के अरबों लोग संकटों के साए में जी रहे हैं। इस दिशा में विश्व का ध्यान आकर्षित करने और यह बताने के लिए कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने व समझने की कोशिश करने के लिए कि सभी के सहयोग से हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन और जैव विविधता को बनाए रखेंगे, लोगों को चुनौतियों के साथ संभावित समाधानों के प्रति जागरूक करते हुए पृथ्वी ग्रह को संभावित विपदों से बचाना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार 19 भारतीय भाषाओं में 52 कड़ियों वाला धारावाहिक धरती मेरी धरती विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्था है जिसका उद्देश्य विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के साथ लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता का प्रसार करना है। इस धारावाहिक के माध्यम से पृथ्वी ग्रह के विभिन्न पहलुओं जैसे पृथ्वी के निर्माण, स्थल मंडल, महासागरों, वायुमंडल, जैव मंडल और जैव विविधता पर हम बात करेंगे। मैं यह आशा करता हूं कि धरती मेरी धरती धारावाहिक नई पीढ़ी को पूरे ब्रह्मांड में जीवन को पनाह देने वाले इस पृथ्वी ग्रह को बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.